ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: आ गई है बनारसी कुड़ी, सो बनारस लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और बढ़िया हैं। आज की ये सुबह, गंगा किनारे की वो ठंडी हवा, घाटों पर गूंजती घंटियों की आवाज और गुदौलिया चौराहे की तरफ से आती कचौड़ी जलेबी की वो महक। सच कहूं गुरु, बनारस में जन्म लेना ही अपने आप में एक उत्सव है। जितने भी लोग इस वक्त चाय की चुस्की के साथ रेडियो ऑन किए हैं, आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। देखिए, अगस्त का ये महीना जो है ना बनारस, त्योहारों का महीना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, है ना? और विविधता में एकता की जो बात है वो इस माह देखने को मिली है। जी हाँ, आजादी का जश्न हो या हो श्रृंगार की बात, सर्प पूजा का पावन पर्व हो या हो फसलों का पर्व ओनम, भाई बहनों के अटूट रिश्ते की डोर हो या फिर हो पारसियों के नए वर्ष नवरोज, और चाहे जश्न हो ईद मिलाद उन नबी का, ये सारे ही पर्व हमें आपसी प्रेम, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, त्याग और एकता का संदेश देते हैं। और एक बात तो तय है गुरु, कि उत्सव केवल परंपराओं का निर्वाह नहीं है, बल्कि जीवन को नए सिरे से महसूस करने का अवसर भी है। वो हमारी संवेदनाओं को ताजगी देते हैं, सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और नीरस दिनों में उमंग, ऊर्जा और आशा के नए रंग भर देते हैं। उत्सव हमारे मन की अनुभूतियों के रंगीन पंख होते हैं। आदिकालीन

मानव की तमाम यात्राएं वक्त के गलियारों से चलती हुई उत्सवों की रंगारंग आभाओं के अनूठे गीत गाती रही हैं। अतीत के वो सारे मोड़ जिनसे घटनाएं इतिहास में तब्दील हुई, वास्तव में उत्सवों की छवियां समाहित किए हुए थे। सृष्टि की गहराइयों में मानव ने जहां भी अपनी उंगलियों की छाप छोड़ी, वहां उसने अपने अस्तित्व की सफलता से प्रेरित होकर उस जीत को जश्न में बदल डाला। उत्सवी पंखों के सहारे ही हम अपने लिए नीला उन्मुक्त आकाश तलाश करते हैं। उन्हीं के सहारे हम अपनी एकांतिक निजता को सामूहिकता में परिणत कर देते हैं। हम अपनी प्रकृति से हमेशा सामाजिक रहे हैं और उत्सव हमारी सामाजिकता को नया आयाम देते हैं। उत्सव आह्लाद और राग की जिजीविषा के स्पंदन को हमारे करीब ले आते हैं। उत्सव धड़कती आहटों को नए रूपाकार देते हुए उन्हें हमारे भीतर उतार देते हैं। अपनी सामाजिक प्रकृति के चलते हम अपनी स्वप्निल आकांक्षाओं को लोगों से बांटते हैं। संगीत की उत्ताल लय में अपने वजूद की सार्थकता खोजना चाहते हैं। एक सार और ठहरे जीवन में कुछ क्षणों को हम धूमधाम और आतिशबाजी में बदल देना चाहते हैं। कभी कभी महसूस होता है कि कितना थका थका और थमा सा हो जाता है जीवन और हमारी संवेदनाएं कितनी कुंद, पर फिर शुरू होता है समारोह गीत, संगीत और थिरकते हुए लोगों की मौजूदगी का उत्सव, उत्साह का तूफान। ये जीवन की नीरस आपाधापी के बीच इंसान का सामूहिक प्रयत्न है कि वो आपसी नीरस जिंदगी में रोशनी का उत्सव ले आए। उत्सव जिंदगी को नए सिरे से खोजने का मौका देते हैं। मनोवैज्ञानिक हर्ब रैपापोर्ट अपनी किताब हॉलीडे ब्लूज रीडिस्कवरिंग द आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन में कहते हैं कि उत्सव व्यक्ति को अपने जीवन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करते हैं। दरअसल आपका उत्सव को मनाने का तरीका दर्शाता है कि आप अपने जीवन को किस तरह देखते हैं। समय, परिवार और परंपराओं में परिवर्तन के साथ इन मौकों को मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। जो नहीं बदला है वो है प्रेम, समर्पण, ऊर्जा और रचनात्मकता का मिश्रण, जिसमें इन अवसरों को बेशकीमती पलों में बदल देने की ताकत होती है। इस मिश्रण से ही बनता है उत्सव फॉर्मूला, जो नीरस और बेजान जिंदगी को भर देता है कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से। गुड मॉर्निंग बनारस।

हां जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 23 अगस्त 2026 और दिन है आज रविवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में। आज खास सावन के कल अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। कल शनिवार से ही कांवड़ियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से लेकर मार्कंडेय धाम तक आज भीड़ उमड़ेगी। वहीं कल शनिवार से डायवर्जन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। मंगलवार की सुबह 8 बजे तक मैदागिन से गुदौलिया तक नो व्हीकल जोन रहेगा। मड़वाडी से मोहन सरायन तक एक लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित की गई है। गुदौलिया और चौक की तरफ से गेट नंबर 4 तक रात से ही कतार लग जाएगी। उधर मार्कंडेय महादेव मंदिर में दर्शन के लिए कल शनिवार की रात से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। कांवड़िये शिविरों और धर्मशालाओं में पहुंचने लगे। सावन का अंतिम सोमवार कल होने से श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है लगातार, और इसको लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन में भक्त 25 से 30 मिनट में जलाभिषेक कर ले रहे हैं, और सोमवार को भी कल व्यवस्था की गई है कि भक्तों को ज्यादा समय तक लाइन में इंतजार न करना पड़े। तो बस सावन अब खत्म होने की दहलीज पर है, तो सभी को एक बार फिर से

पुनः कल सावन के अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि काशी और सारनाथ को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कल शनिवार को स्टेक होल्डर टूरिज्म एसोसिएशन और विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बैठक की। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने प्रस्तावित पर्यटन विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और उसमें बताया गया कि घाटों की साफ सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की व्यवस्था करने की योजना है। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक नावें भी चलाई जाएंगी, इससे प्रदूषण जो है वो कम होगा। काशी में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को बेहतर और विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ साथ विरासत स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और साथ ही कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल शनिवार को सुबह से ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई। दोपहर में कुछ देर तक धूप भी अच्छी हुई लेकिन फिर बादलों की आवाजाही जारी रही। इस तरह के मौसम के बाद भी गर्मी से जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। उमस जो है वो लगातार बरकरार है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। कल शनिवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोनों तापमान औसत से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा और शाम को भी मौसम सामान्य रहा। इसके साथ ही बाढ़ वाले इलाकों में सबसे बड़ी समस्या लाइट की आती है और पानी में करंट उतरने के डर से बिजली काट दी जाती है। ऐसे में इन इलाकों में रोशनी को ध्यान में रखकर नगर निगम ने सोलर लाइट लगाने की कार्य योजना बनाई है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने आलोक विभाग को जिम्मेदारी दी है। वाटरप्रूफ और ऊंचे पोल पर लगी सोलर स्ट्रीट लाइटें सबसे उपयुक्त होती हैं। मुख्य बिजली गुल होने पर भी बिना किसी खर्च के रोशनी देती है। जल रोधक लाइट में शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं होता। बैटरी खराब मौसम या लगातार धूप न निकलने पर भी लंबे समय तक बैकअप देती है और ऑटोमेटिक सेंसर से चालू होती है और सुबह बंद हो जाती है। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 23rd of August। आपको बता दें कि आज 23 अगस्त का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में अत्यंत स्वर्णिम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ, विशेषकर भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। जब 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरने वाला दुनिया का पहला अभियान बना। इस ऐतिहासिक दिन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में भी घोषित किया, जो आज मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान लूनार ऑर्बिटर 1 ने आज के दिन 1966 में पहली बार चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की श्वेत श्याम तस्वीर खींची थी। तो है ना प्राउड मोमेंट वाली बात। और स्पेशल इवेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज के दिन मनाया जा रहा है नेशनल स्पेस डे। और बर्थडेज की अगर बात की जाए तो आज है पड़ोसन और जंगली जैसी सुपरहिट फिल्मों की मशहूर दिग्गज अभिनेत्री रही सायरा बानो का जन्मदिन। और इसके साथ ही साथ शुद्ध देसी रोमांस, बेफिक्रे और वॉर जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली जानी मानी अभिनेत्री वाणी कपूर का हैप्पी वाला बर्थडे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, हम रोज खरीदारी करते समय नगद पैसे लेते और देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही पैसे हमें बीमार भी कर सकते हैं? दरअसल बाजार में खरीदारी से लेकर होटल, मेडिकल स्टोर और बैंक तक एक ही नोट दिन भर में कई हाथों से होकर गुजरता है। ऐसे में नोटों पर बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे जर्म्स मौजूद हो सकते हैं जो संक्रमण का रिस्क बढ़ाते हैं। साल 2023 में एक स्टडी में एक रिव्यू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसके मुताबिक सिक्के, नोटों और पेमेंट कार्ड्स पर कई तरह के जर्म्स और टॉक्सिन्स हो सकते हैं। इनमें सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस, नोरो वायरस और
जो आंतों में इन्फेक्शन फैलाने वाला वायरस होता है, और सैल्मोनेला बैक्टीरिया भी शामिल होता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि नोटों पर मौजूद जर्म्स से क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही जानेंगे कि किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और नोटों से फैलने वाले संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं।

देखिए, हमारे पर्स में रखे नोट में सचमुच जर्म्स होते हैं। जी हाँ, इन पर बड़ी संख्या में जर्म्स हो सकते हैं। दरअसल एक ही नोट कई लोगों के हाथों से होकर गुजरता है, इस वजह से उस पर धूल, पसीना, तेल, बैक्टीरिया और वायरस जमा हो सकते हैं। नोटों की तरह सिक्के भी कई लोगों के हाथों और अलग अलग सतहों के संपर्क में आते हैं, ऐसे में इन पर भी बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे जर्म्स हो सकते हैं। नोट गंदे होने के कई कारण हैं, जैसे कई लोगों के हाथ का संपर्क, एक ही नोट कई लोगों के संपर्क में आता है, हर व्यक्ति के हाथों पर अलग अलग तरह के जर्म्स हो सकते हैं। कई लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने या गंदी चीजें छूने के बाद हाथ नहीं धोते, ऐसे हाथों से नोट छूने पर जर्म्स नोट पर पहुंच जाते हैं और इसी से खराब हाइजीन उत्पन्न होती है। नोट जेब, पर्स, दुकानों के काउंटर, गाड़ी और बैग में रखे जाते हैं, इन सतहों की धूल और गंदगी नोटों पर चिपक जाती है। कई लोग नोट गिनते समय उंगली पर अपना सलाइवा यानी कि थूक लगाते हैं, इससे मुंह के बैक्टीरिया सीधे नोटों पर पहुंच जाते हैं। एक नोट कई सालों तक चलन में रहता है, पुराने नोटों पर जर्म्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। पसीने और नमी के संपर्क से नोटों पर जर्म्स लंबे समय तक टिके रहते हैं। आमतौर पर जब वो नोट सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, जो लंबे समय से चलन में हैं और रोजमर्रा के लेन देन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मटमैले या बहुत पुराने नोट, दाग धब्बों वाले नोट, नमी गंदगी के संपर्क में रह रहे नोट, फटे हुए नोट। नोटों पर कई तरह के जर्म्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ सामान्य होते हैं जबकि कुछ इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इन नोटों को छूने के बाद अगर वही हाथ सीधे मुंह, नाक, आंखों या खाने पीने की चीजों के संपर्क में आते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इससे आपको सर्दी, जुखाम, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। वैसे तो सभी लोगों को नोट और सिक्के के लेन देन के बाद हाथ धोना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें कोई हेल्थ कंडीशन है, जिन्हें डायबिटीज है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, बच्चे और बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपना सलाइवा यानी कि थूक लगाकर नोट गिनते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। इससे मुंह के जर्म्स नोटों पर और नोटों के जर्म्स हाथों और मुंह तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको नोट गिनना ही है तो आप फिंगर मॉइस्चराइजर पैड यूज करिए, नोट गिनते समय चेहरा मत छुइए, नोट गिनने के बाद हाथ धोइए और हाथों में सैनिटाइजर लगाइए, खाने से पहले हाथ जरूर धोइए। नोटों को पानी, साबुन या किसी केमिकल से धोना सही नहीं है, इससे नोट खराब हो सकते हैं। अगर कोई नोट बहुत ज्यादा गंदा, फटा या खराब हो गया तो उसे बैंक में बदला जा सकता है। नोटों को साफ करने के चक्कर में लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे पानी से धो देते हैं, साबुन लगा देते हैं, ब्रश से रगड़ देते हैं, ब्लीच डाल देते हैं, सैनिटाइजर छिड़क देते हैं और आयरन भी कभी कभी कर देते हैं। नोट जो है ऐसी चीज है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ऐसे में कुछ संभावित रिस्क से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जैसे नोट छूने के बाद हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ साफ करें, नोट छूकर आंख, नाक, मुंह न छुएं, हैंड सैनिटाइजर यूज करते रहें, पर्स हमेशा साफ रखें, नोट को मुंह में न दबाएं, नोट गिनते समय थूक न लगाएं, बच्चों को नोट मुंह में न लेने दें, हाइजीन का खास ख्याल रखें और हो सके तो डिजिटल लेन देन जो है उसे ज्यादा प्रेफर करें। नोटों पर मौजूद धूल, गंदगी और कुछ जर्म्स पर्स में भी पहुंच सकते हैं, इसलिए पर्स को रेगुलर साफ करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में पर्स को कम से कम एक बार साफ करना चाहिए और डिजिटल पेमेंट्स में जर्म्स के संपर्क का तो रिस्क होता नहीं है, इसलिए डिजिटल पेमेंट को आप ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या एटीएम से निकाले हुए पैसे जो हैं वो साफ होते हैं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। एटीएम से निकले नोट भी पहले कई लोगों के हाथ से गुजर कर ही आते हैं, उन पर भी जर्म्स मौजूद हो सकते हैं और सैनिटाइजर या अन्य केमिकल नोट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें कभी यूज नहीं करना चाहिए नोटों पर। और सिर्फ धूप में रखने से नोट पूरी तरह जर्म्स फ्री नहीं होते, कुछ जर्म्स कम हो सकते हैं, लेकिन ये संक्रमण से बचाव का सही तरीका नहीं है। तो नोट पर बैठे हुए जर्म्स और बैक्टीरिया से बचने के जो टिप्स आपको आज बताए गए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बात जरूरत की। सो बनारस, आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्युएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17 और 45 सेकंड हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज, CCTV कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों का मानदेय 1,000 रूपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें 2,000 रूपये की जगह 3,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। साथ ही रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 3,54,000 रसोइयों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइयों के सम्मान समारोह में मानदेय

0: बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वह रसोइयों को हेल्थ कार्ड वितरित कर कैशलेस इलाज की सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के साथ ही सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक परेशान न हों। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री योगी ने कल लखनऊ में प्रदेश में चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। कल नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
4: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और @AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्र सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए AI युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। एक रिपोर्ट।
5: सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए सर्वाधिक 45 परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद में बनाए गए हैं, जहां पर 18,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं आगरा में 26 केंद्रों पर 11,904 जबकि कानपुर शहर के 24 केंद्रों पर 10,698 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज परीक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में करीब 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
6: प्रतिनिधि मंडल के वाराणसी दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलने की उम्मीद है। जापानी दल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया और स्तूपों का

0: अवलोकन किया। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुआ। सदस्यों ने यहां काशी की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की झलक देखी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में कल ओडिशा परब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्कृति, कला और पर्यटन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा कराया जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 466 करोड़ 45 लाख रुपए की परियोजना को कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 9 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की 24 घंटे निगरानी करने और हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनिए गायन। कलाकार हैं विदुषी पद्मा तलवलकर। राग है जौनपुरी। आपके साथ तबले पर संगति ओमकार गुलवाड़ी की है और हारमोनियम पर हैं गोविंद पटवर्धन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थी विदुषी पद्मा तलवलकर। राग था जौनपुरी। आपके साथ तबले पर संगति ओमकार गुलवड़ी की थी और हारमोनियम पर थे गोविंद पटवर्धन। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट।

0: साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय

0: भी सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दो देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मखदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर

0: हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पहली सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under 20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the Seva Sankalp Abhiyan. Briefing the media, BJP national general secretary Vinod Tavre announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17th of September. With Anand and Priya, Soumya Sharan, Akashwari News, Delhi.
2: The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration. A report.

0: legacy headlines the pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on their front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूनरेजी के खात्मे के लिए अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज ओडिशा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ता नजर पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खलूस के साथ काम करने के लिए अहदबस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नबीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की मजम्मत और वाज़ेह तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दोबंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने ये अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वक़ार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ کے اختتام کے بعد ریاستی صدور جنرل

0: सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक्किद की गई। सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़वाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इत्तला तो नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नजर इश्तहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा ज़वाबित पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तहारात पर मुनहसर है, ख्वाब वो पे चैनल हो या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तहारात के दौरानिए की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क जाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तहारात के लिए दौरानिए की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। वजारत के मुताबिक नशरियाती शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। 2006 में जहां सिर्फ 62 टीवी चैनल थे, वहां अब इनकी तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। पहले केबल टीवी टेलीविजन चैनल की जरूरियात की बुनियाद का जरिया था और इसकी नशरियाती गुंजाइश महदूद थी, जिसके बाइस सारिफिन के पास पसंद या नापसंद का महदूद मौका था। आकाशवाणी दिल्ली से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के खेलों के वजीरों और वफूद के सरबराहान के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के वजीरों की मीटिंग का मकसद खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान तआवुन को मजीद मुस्तहकम करना और अवाम से अवाम के दरमियान करीबी राबते को फरोग देना है। मीटिंग में रिवायती और मकामी खेलों, खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों के साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के हुकूमती बयानात, दोतरफा मीटिंगें और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी। तवक्को है कि मीटिंग के अख्ताम पर खेलों से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों का मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया जाएगा। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शरीक मुल्कों के दरमियान दोस्ती, यकजहती और ताउन के जज्बे को फरोग देने के लिए आज सुबह सवेरे ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग दौड़ का इनेकाद किया गया। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के खेल के वजीरों की मीटिंग मुश्तरका ऐलामे को मंजूर किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबारी सरगर्मियों, जिद्दत तराजी और समाजी तरक्की के शोबों में मौाक़े को वसअत देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: केमिकल्स और खादों के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल खरीफ के मौजूदा और आइंदा रबी सीजन के लिए खाद के महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में मुनक्किदा मीटिंग में महकमा खाद के सेक्रेटरी और आला अफसरान मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मुल्क में खाद की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी और बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरकजी वजीर मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को तहकीक, जिद्दत तराजी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर दुनिया की फार्मेसी की अपनी शनाख्त से आगे बढ़कर दुनिया की तजर्बगाह के तौर पर उभरना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मुनाकिद IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकलाबी सलाहियतों और उसके मुस्बत असरात को उजागर किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज से रूस का दो रोजा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तजारती, इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 70 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिखकर पाकिस्तान के कब्जे

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। बस थोड़ा सा इंतजार लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: सर 50,000 एडवांस।
2: इतना कैश तो हम नहीं लाए।
3: और आज बैंक भी बंद है।
4: इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ।
3: लेकिन
4: अरे अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने क्योंकि RBI करना है कि
5: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
6: औरों को भी सिखाओ।
7: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
8: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
9: बुकिंग है तो संपर्क करें
11: 0542227658
12: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा मधुरिमा कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जो किसी की याद दिलाएंगे,

जी हाँ, उम्र के इस पड़ाव पर भी बला की खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो 1960 से 1970 के दशक की खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 में मसूरी उत्तराखंड में हुआ। माँ नसीब बानो एक अदाकारा और पिता मियाँ एहसान उल हक एक फिल्म निर्माता थी। यही कारण था कि फिल्मों से लगाव और जुड़ाव हमेशा रहा।

सन 1961 से शम्मी कपूर के साथ जंगली फिल्म में आपकी भारतीय सिनेमा में कदम रखने वाली सायरा बानो ने आज किसी को ये तक नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। पहली फिल्म से ही फिल्म जगत में अपनी लोहा मनवाने वाली, खास अपनी पहचान बनाने वाली सायरा बानो ने कहा

0: चाहता है।
1: छोटी सी उम्र से दिलीप कुमार को पसंद करने वाली सायरा बानो ने अपना जीवन साथी उनको चुना और एक खूबसूरत जीवन साथी के साथ अपना जीवन जिया भी। उनकी जोड़ी अक्सर दर्शकों को मोह लिया करती थी, लगा वो एक दूसरे के लिए ही बने थे।

कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए आपकी कई फिल्मों का नामांकन हुआ। कुछ फिल्में तो आज भी जैसे लोगों को तुरंत याद आ जाती हैं, जैसे आई मिलन की बेला, शागिर्द, पड़ोसन, गोपी, पूरब पश्चिम, सगीना, हेरा फेरी, ब्लफ मास्टर और विक्टोरिया नंबर 203। तो आइए सुनते हैं विक्टोरिया नंबर 203 का एक गीत और हो जाते हैं एक बार फिर से आपके दीवाने।

मधुरमा कार्यक्रम में आज हम गीतों के माध्यम से याद कर रहे थे खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो को और दे रहे थे उनके

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र।
1: 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
3: जब भी किसी मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल और डर होता है। इनमें से एक एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा को लेकर होता है। आज एनेस्थीसिया केवल मरीज को बेहोश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्द नियंत्रण, सांस और रक्तचाप की निगरानी और ऑपरेशन के दौरान मरीज की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। फिर भी एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में किस तरह के भ्रम है, ये किसी भी ऑपरेशन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, ये हमारे शरीर पर किस तरह असर करती है और बदलते वक्त के साथ इलाज में एनेस्थीसिया की भूमिका को लेकर किस तरह के शोध सामने आए हैं, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है।
4: नमस्कार शैलेंद्र जी।
5: सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो सामान्य मरीज हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनका इलाज भी शुरू हो जाता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उनके इलाज का क्या क्या हिस्सा है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, ऑपरेशन के दौरान मरीज के लिए इसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या ये सिर्फ मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया है या फिर इसका काम और ज्यादा है।
4: आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया अगर आप देखें तो मेडिकल विज्ञान क्षेत्र की सबसे नवीनतम तकनीकों में से एक है, जिसका जन्म 150 से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के बोस्टन शहर में मासाचुसेट्स हॉस्पिटल में हुआ था। और इस तकनीक की उपलब्धि की ये है कि इसके उत्पत्ति के बाद से मरीज को होने वाले ऑपरेशन के दौरान दर्द और उसकी सेफ्टी बहुत गुना बढ़ गई है। इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि जब भी आप कभी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने सर्जन से मिलें और सर्जन के मिलने के साथ ही आप अपने बेहोशक और एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलने की चेष्टा जाहिर करें। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है जिसके लिए आपकी सर्जरी होनी है उससे रिलेटेड जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स आपके ऑपरेशन के दौरान आ सकती हैं उनको एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पहले से देखकर समझकर और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने लेवल से मैनेज करके करा जा सकता है।
5: बिल्कुल सर, आप रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों को देखते होंगे, उनके सवालों को सुनते होंगे, तो सर आम लोगों में एनेस्थीसिया को लेकर किस तरह का डर आपने देखा, मरीजों के मन में इसे लेकर किस तरह के सवाल होते हैं?
4: देखिए, जब मरीज प्रथम बार किसी ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरने वाला होता है तो उसके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं कि मेरा ऑपरेशन कितनी देर का होगा, मेरे ऑपरेशन के दौरान मेरे ऊपर कितना दर्द की संभावना हो सकती है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है मरीजों का कि डॉक्टर साहब, बेहोशी के टाइम मुझे कुछ पता तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ याद तो नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा तो क्या मैं उस चीज को देख के डर तो नहीं जाऊंगा। तो इन सभी मरीजों और सभी अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों को मैं यही चीज बोलता हूँ कि ये चीज बिल्कुल साधारण है। इसको समझने और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपका ये चेष्टा होनी चाहिए कि आप अपने एनेस्थेटिस्ट से ये सारे सवाल खुल के ऑपरेशन से पूर्व पूछें कि क्या आपको ऑपरेशन के दौरान दर्द होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
5: सर, मरीज से पूछते भी हैं बीच बीच में क्या आपको दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा?
4: बहुत बढ़िया सवाल है।
5: एनेस्थीसिया असर कर रही?
4: इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं

0: मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि एनेस्थीजिया मूलतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीजिया, जिसमें मरीज पूर्ण बेहोश होता है। दूसरी तरीके का एनेस्थीजिया जो होता है वो होता है रीजनल एनेस्थीजिया, जो आज के समय में बढ़ रहा है। जैसे कमर के नीचे की अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है, पैर में चोट है, पैर में कोई गांठ है, जो सबसे सूक्ष्म लेवल का एनेस्थीजिया होता है वो होता है लोकल या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया, जिसमें आपको नींद की कम मात्रा में दवाई देते हुए छोटी सी बायोप्सी करनी है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट है किसी छोटे से प्रोसीजर के लिए जिसके लिए पूर्ण बेहोशी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तरीकों में हम लोग लोकल एनेस्थीजिया और मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर करते हैं।
1: जैसे सर दांत वगैरह उखड़वाते हैं तो
0: जी
1: उसमें किस तरह का
0: देखिए, दांत वाले एनेस्थीजिया जब आप उखड़वाने जाते हैं तो यूजुअली लोकल एनेस्थीजिया या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर दी जाती है। लोकल एनेस्थीजिया मतलब शरीर के जिस हिस्से की छोटी सी जांच करनी है, या दांत उखाड़ना है, या मरहम पट्टी करनी है, चोट लगी है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस एरिया में छोटा सा लोकल एनेस्थीजिया दे देते हैं और उतने हिस्सा सुन्न हो जाता है, और पूर्ण बेहोशी में मरीज की सभी क्रियाओं का पूर्णतः कंट्रोल एक विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के पास होता है। तो जनरल एनेस्थीजिया में तो आपको मॉनिटरिंग जब हम करते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि मरीज का हार्ट रेट कितना है, मरीज की दिल की धड़कन कितनी है, और रीजनल एनेस्थीजिया में पेशेंट बिल्कुल खुश रहता है, सब कुछ सुनाई देता है, बीच में वो गाने भी सुन सकता है ऑपरेशन के दौरान, तो वो अपना काम आराम से कर सकता है और
1: डॉक्टर
0: ऑपरेशन
1: भी
0: चलता
1: बीच में
0: रहता है।
1: कंफर्ट कराने के लिए मरीज से बात
0: बिल्कुल,
1: करते रहते हैं।
0: तो रीजनल एनेस्थीजिया का बहुत उपयोग होने से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से मरीज अडॉप्ट कर लेता है और इन चीजों पे बड़ा खुश रहता है।
1: सर ये तो बात हो गई मरीजों के मन में जो सवाल है एनेस्थीसिया को लेकर उसकी, लेकिन सर एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि कई लोग मानते हैं कि एनेस्थीसिया का दिमाग और याददाश्त पर लंबे समय तक असर पड़ता है, क्या ये सामान्य भ्रम है या फिर कुछ मरीजों में ऐसी समस्या कई बार देखने को भी मिली?
0: बहुत बढ़िया सवाल शैलेन जी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि तीन बेहोशी के जो हम लोग की तकनीकें हैं, जनरल एनेस्थीजिया, रीजनल और लोकल, उसमें दिमाग पे असर पड़ने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जनरली जनरल एनेस्थीजिया के मरीजों में देखने में पाई जाती है, लेकिन सभी मरीजों में नहीं होती है। ये उन मरीजों में होती है जिनमें उनकी एसोसिएटेड कोई इलनेस होती है, जैसे कि आप बढ़ती हुई उम्र के हैं, आप 65 साल, 75 साल, 80 साल, और आपको पहले से भूलने की बीमारी है, या आप किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहे हैं, या आपको सर में चोट लगी है जिसके लिए आप उस ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो एनेस्थीजिया की दवाओं का जो असर होता है वो मूलतः 8 घंटे से 24 घंटे ऑपरेशन के बाद तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद, तो उसमें बेहोशी से ज्यादा मरीज को ऑपरेशन से पहले जो बीमारी है वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ सकती।
1: सर इसी से रिलेटेड सवाल ये भी है कि अगर जब किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो क्या इसको परखा भी जाता है ऑपरेशन से पहले, किसी
0: बिल्कुल
1: टेस्ट भी किए जाते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जो हम लोग के एनेस्थीजिया में एक चीज होती है पीएसी, जिसको हम लोग कहते हैं प्री एनेस्थीजिया चेकअप, और आपको ये कभी नहीं पता चलता है कि ये शरीर बेहोशी के दौरान कैसा बिहेव करेगा। इसी चीज को जांचने के लिए एनेस्थेटिस्ट द्वारा पीएसी को बहुत ज्यादा जरूरी बोला गया है, कि अगर आपके पेट में का छोटा सा ऑपरेशन है, हाथ का छोटा सा ऑपरेशन है, किसी भी चीज का छोटा ऑपरेशन है जिसके लिए आपको चाहे लोकल एनेस्थीजिया भी लेना पड़ रहा हो, आप विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट से मिलकर अपनी पीएसी जांच जरूर कराएं। क्योंकि जब आप ये जांच कराते हैं तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपके कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जिनसे हमको आपके शरीर में क्या चीज नॉर्मल से कम है, क्या चीज नॉर्मल से ज्यादा है, और वो चीजें पता लग जाती हैं बिफोर हैंड, और उनको फिर हम लोग को कंट्रोल करने में ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के अंदर बहुत आसानी फील होता है।
1: बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से जानकारी दी सर कि अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मरीज भी अलग अलग एज के होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है, तो क्या सर बच्चों, बुजुर्गों, हृदय और सांस की बीमारी वाले मरीजों या फिर गर्भवती महिलाओं में एनेस्थीसिया देते समय किसी अलग तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, और क्या हर मरीज के लिए इसका अमाउंट भी अलग होता?
0: बिल्कुल, जैसे पीएसी पे हम लोग जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसकी उम्र देखते हैं, हम उसका वजन लेते हैं, हम उसकी हाइट देखते हैं, हम उसके मेंटल स्टेटस देखते हैं, आईक्यू लेवल देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ गया लेकिन उसकी अभी आईक्यू कम है, तो हम सभी मात्राओं और सभी अवेलेबल रिसोर्सेस को जांच परख करके ही अपना एनेस्थीजिया का प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई गर्भवती महिला आती है, तो गर्भवती महिला में एक जान नहीं दो जान है, तो जब भी हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि हमें दो जानों की रक्षा करनी है, और उसी के हिसाब से हम अपना प्लान प्लान बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी डोज देनी है, किस व्यक्ति को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस व्यक्ति में हमको ये चीज नहीं करनी है और किस व्यक्ति के लिए हमको कितनी मात्रा में उचित ड्रग देनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते।
1: बिल्कुल सर, आपने सर चर्चा के दौरान कहा कि जब एनेस्थीसिया दी जाती है कंप्लीट तौर पे तो हम खुद ही मॉनिटर भी करते हैं कि उनका हार्ट रेट क्या है, उनके बाकी चीज क्या है, तो सर ये भी आप

0: समझना जाएंगे कि मरीज की सांस, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, हृदय गति और एनेस्थीसिया की गहराई जैसी चीजों की लगातार निगरानी में तकनीक का किस तरह से प्रयोग बढ़ा है, खासतौर पर जब मॉनिटरिंग के लिए तकनीक और आधुनिक उपकरण भी अब प्रयोग किए जा रहे हैं।
1: एनेस्थीसिया इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से अगर मृत्यु दर में कोई कमी आई है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस ब्रांच की वजह से हुआ है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग के पास जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज होता है तो वो पूरे टाइम मॉनिटर होता है। जैसे कि अगर मैं अगर बाई एग्जाम्पल बताना चाहूं तो जैसे अगर डॉक्टर साहब आपका 1 घंटे या 2 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर ले रहे होंगे या आपकी सांस की धड़कने सुन रहे होंगे, उसके एवज में अगर आप ऑपरेशन में होंगे तो आपके हाथ में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा वो हर 2 मिनट 3 मिनट में अपने आप बीपी लेता रहेगा। लगातार आपकी ईसीजी मॉनिटरिंग हो रही होगी कि जिससे कि आपके दिल की धड़कन बिल्कुल नियंत्रण में रहे और हमारी आंखों के सामने रहे। तो मॉनिटरिंग तो एनेस्थीजिया का अगर आप कहिए तो अगर एनेस्थीजिया शरीर है तो मॉनिटरिंग आपकी आत्मा है। बिना मॉनिटरिंग के हम एनेस्थीजिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी
0: सर, इसी में आपसे रिलेटेड सवाल है कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि एआई का भी प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में क्या एनेस्थीसिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर काफी शोध जिस तरह से हो रहे हैं, क्या भविष्य में एआई एनेस्थीसिया की मात्रा तय करने और मरीज की स्थिति के अनुसार उसे नियंत्रित करने में डॉक्टर्स की मदद कर सकता है?
1: शैलेन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एआई हम लोग इधर हाल फिलहाल 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस एआई का उपयोग एनेस्थीसिया में काफी पहले से कर रहे हैं। उसका मैं एक आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लोग के पास मॉनिटरिंग में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में एक पल्स ऑक्स की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये मरीज को ऑपरेशन के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये जो एआई का जो आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड चर्चा हो रही है, इस एआई का उपयोग एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर ब्रांच में जो हम लोग की एक्सट्रीम मॉनिटरिंग है उसमें हम लोग ये काफी पहले से कर रहे हैं। और रही बात आने वाले समय में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एआई का उपयोग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एआई केवल आपको एक चीज बता सकती है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको एआई के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और एआई के साथ रियल इंटेलिजेंस, जो कि एक डॉक्टर और एक मनुष्य में ही ये रियल इंटेलिजेंस हो सकती है। मशीन केवल आपको ये बता सकता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन मशीन आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है रियल इंटेलिजेंस, जो वर्षों की अथक मेहनत और अथक प्रयास और अथक मरीजों के साथ अनुभव के साथ बन पाती है। और उस चीज को अगर हम आने वाला समय देखें तो हमारे जो ब्रांच की डेवलपमेंट होगा वो इसी श्रेणी में होगा कि कैसे एआई और रियल इंटेलिजेंस मिलके हम मरीज को ऑपरेशन के दौरान और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रख सके।
0: बिल्कुल सर, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और हम एआई तकनीक की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा कि हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल के अध्ययन में इंडोस्कोपी जैसे मामलों में नाक के रास्ते से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया,
1: जी
0: जिसमें दर्द और ऑपरेशन से पहले की चिंता कम होने की बात सामने आई।
1: बिल्कुल
0: तो सर, क्या ऐसे नए प्रयोगों का भविष्य आप देखते हैं और क्या ये पारंपरिक एनेस्थीसिया का विकल्प बन सकते हैं?
1: देखिए, एनेस्थीसिया में हम लोग शरीर के सभी तरीकों से हम लोग दवाई देने की कोशिश करते हैं। सबसे सीधा तरीका होता है कि मरीज को उसकी नसों के द्वारा खून के रास्ते से दवाई दे दें। दूसरा तरीका होता है कि मरीज को हम सुंघा के, जैसे आपकी श्वास नली के रास्ते हम कुछ दवाइयां दें जिससे वो चला जाए। तो ये श्वास नली के ही रास्ते में अगर आप देखें तो नाक का जो रास्ता होता है वो आपके एयरवे का ही पार्ट होता है। एयरवे का मतलब ये कि जो चीज हम लोग सांस लेने में उपयोग लेते हैं उसको ही हम एयरवे कहते हैं। तो ये भी जो रास्ता है नेजल रूट, उसका उपयोग भी हम लोग बहुत बार दवाइयां देने के लिए करते हैं जिससे कि वो दवाइयां अच्छे से शरीर में पहुंच जाएं और उसका हम लोग मरीज की स्थिति को नियंत्रण करने में कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सामान्य मरीज है उसके लिए आपका संदेश क्या है? ऑपरेशन से पहले ज्यादा डर एनेस्थीसिया को लेकर जिन्हें लगता है, मरीज और उसके परिवार को एनेस्थीसिया से जुड़ी किन बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए?
1: देखिए, मैं इस टॉक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, देखिए एनेस्थीसिया जनरली जब कभी आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मतलब हमारे पास समय होता है, तो वो बहुत अच्छा समय होता है अपने शरीर को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के। ऑपरेशन से पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आप अपने अल्कोहल को पूर्णतः छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऑपरेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, वो आपसे कहेंगे देखिए आप अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए जब हम ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी के उस दौर से गुजरते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा, किसी भी एनेस्थेटिस्ट से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा कठिन मरीज वो यही बताएगा कि एक मोटा मरीज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं एनेस्थीसिया के पर से कि उनको कंट्रोल करने में

0: बहुत हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप ऑपरेशन से पहले अपने वजन को 4-5 किलो भी कम कर लेंगे तो आपकी ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी और ऑपरेशन के दौरान आपका रिस्क भी बहुत कम होगा। लेकिन एनेस्थीजिया का रिस्क इलेक्टिव सर्जरी में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बेहोशक से ज्यादा खुद मरीज की है कि अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अडाप्ट कर लेगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, एल्कोहल छोड़ देगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। तो नॉर्मल पब्लिक से मेरा यही संदेश है कि जब भी कभी सर्जरी के लिए आपकी प्लानिंग हो तो अपने एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलें, अपना प्री ऑपरेटिव एनेस्थीजिया चेकअप जरूर कराएं और आपके पास सबसे अच्छा समय है अपनी खराब आदतों को, गलत आदतों को रोककर सही आदतों को अपनाने का। पीएसी के बाद जो समय होता है उसको आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप में अच्छे चेंजेस ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, एनेस्थीजिया पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और लोगों के बीच इसे लेकर सामान्य भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चैलेंज जी, और मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से एनेस्थीजिया जैसे एक सब्जेक्ट जिसके बारे में बातचीत होती है और जर्नली पर्दे के पीछे का काम होता है उसको सुन के जब भी कभी सर्जरी कराने जाएं तो अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें और अपने दिल की जो भी क्वेश्चन है उनसे डायरेक्टली बात करके अपने डर को दूर करने की कोशिश।
1: बिल्कुल धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अहमद फराज पर खसूसी प्रोग्राम जिसका उनवान है अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर शमीमा उज़्मा की है जिसे आवाज दी है डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर ने।
4: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाए सामीन। आज का उर्दू प्रोग्राम अहमद फराज पर मबनी है। आज के उर्दू प्रोग्राम का उनवान है अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर है मोहतरमा शमीमा उज़्मा साहिबा की जिसे आवाज़ दी है डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब ने।

0: लिखते हैं।
1: उर्दू सामईन, अभी आप सुन रहे थे हमारा खुसूसी उर्दू प्रोग्राम अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर थी मोहतरमा शमीमा उज्मा साहिबा की, जिसे आवाज दी थी डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर साहब ने। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शमसुल आरफीन को दें इजाजत। आदाब।
2: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। कुछ ही पलों में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम लोक संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार हैं नीतू चंचल और साथी। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं आपके स्वर में ये देवी गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार नीतू चंचल और साथी। अभी आपने सुना देवी गीत। देवी गीत के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये कजरी।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं नीतू चंचल और साथी। अभी आपने सुना कजरी, कजरी के बाद एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं आपके स्वर में ये कजरी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज की कलाकार थी नीतू चंचल और साथी। इनका गाया लोकगीत आप कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ हिंदी।
1: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें एक हिंदी गीत सिखाएंगे। नलिनी जी मेरे साथ आपको सिखाने में मदद करेंगी। नलिनी जी, कौन सा गीत लें आज?
2: विनय चंद्र जी, आज हम बच्चों को जो गीत सिखाएंगे उसके बोल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। और बच्चों, आपको पता है ये किसने लिखा है? इस गाने को विनय चंद्र जी ने ही लिखा है और स्वरबद्ध भी इन्होंने ही किया है।
1: अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम इस गीत के बोल लिख लें। आप लिख लीजिए सब बोल। हिंद देश, हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी, आगे चले, आगे लिखवाएं, लिख हाँ, सभी जन, सभी जन एक हैं, सभी जन एक हैं। पूरी पंक्ति सुन लो एक बार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इतनी पंक्ति सबको ठीक समझ में आ गई ना? लिख ली। आगे लिखे, रंग, रूप, रंग रूप, वेश, वेश भाषा, रंग रूप वेश भाषा, चाहे, चाहे अनेक हैं, चाहे अनेक हैं। बेला लिखो, गुलाब, बेला गुलाब, जूही, ये सब फूल है ना, खुशबूदार सुंदर सुंदर, देखे तुमने ये सब फूल, बेला गुलाब जूही और चंपा चमेली, चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल,
3: प्यारे प्यारे फूल,
1: गूंथे माला में,
3: माला में
1: एक हैं,
3: एक हैं।
1: सबके समझ में आ गया ना अंतरा? लिख लिया
3: जी हाँ।
1: अच्छा, अभी और भी अंतरे हैं इसमें। दूसरा अंतरा है, कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है की तेर प्यारी, गा रही तराना,
3: तराना,
1: गा रही तराना,

0: बुलबुल
1: और बुलबुल तो तराना गा रही है ना, गा रही तराना बुलबुल। राग मगर एक है, अभी है ना, कोयल पपीहा बुलबुल है ना, अलग अलग ढंग से बोलते हैं लेकिन सबका राग एक है, मतलब भाव सबका एक ही है, राग एक ही है उसका। अच्छा एक अंतर और है, वो भी लिखवा दूं?
2: जी हाँ।
1: अच्छा लिखो। अलग हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं ना, तो उन नदियों के नाम इसमें आ गए हैं, गंगा,
2: गंगा,
1: जमुना,
2: जमुना,
1: ब्रह्मपुत्र,
2: ब्रह्मपुत्र,
1: ब्रह्मपुत्रा नहीं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा,
2: कृष्णा,
1: कावेरी,
2: कावेरी,
1: गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई, जाके मिल गई, कहाँ जाके मिल गई?
3: सागर।
1: हाँ, जाके मिल गई सागर में, सागर में, तुमने ठीक सोचा, नदियां कहाँ मिलेंगी? सागर में ही तो मिलती है ना, तो जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं,
2: हुई सब एक हैं,
1: हुई सब एक हैं। अब ये जो गाना है हम शुरू करेंगे आपको, अब दूसरे काले स्वर को सामान के हम सिखा रहे हैं आपको, और चार मात्रा का एक कहरवा ताल है उसमें ये गाना बंधा हुआ है। एक बार इसको लय में बोल लें आप सब, है ना, हिंद देश के निवासी,
2: हिंद देश के निवासी,
1: सभी जन एक हैं,
2: सभी जन एक हैं,
1: रंग रूप वेश भाषा,
2: रंग रूप वेश भाषा,
1: चाहे अनेक हैं,
2: चाहे अनेक हैं,
1: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
2: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
1: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
2: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
1: बेला गुलाब जूही चंपा चमेली,
2: बेला गुलाब जूही चंपा चमेली,
1: प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं,
2: प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं,
1: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
2: हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
1: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं,
2: रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं।
1: अच्छा गीत सिखाएंगे तुम्हें, पहले सुन सुन लो एक बार साथ, फिर उसके बाद इस सुर में अपना सुर

0: अच्छा बच्चों, गीत अच्छी तरह समझ में आ गया ना तुम्हें?
1: जी हाँ।
0: इसकी धुन, शब्द वगैरह सब ठीक तरह से हो गए ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, फिर जाना अपने घर पे जाके इसको खूब इसका अभ्यास करना, कहीं बाद में भूल ना जाए। करोगे ना अभ्यास अच्छी तरह से?
1: जी हाँ।
2: नमस्ते।
0: अच्छा भाई, नमस्ते भाई।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ हिंदी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म आराधना फिल्म का ये गीत है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देवबर्मन का।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: राग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। साहिर का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप जुड़ी हैं आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र के साथ और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कारवां से।
1: सुनिए मां छुट्टियां

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कारवां फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, संगीत था राहुल देव बर्मन का। और अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मदन मोहन का संगीत और गीत राजा मेहंदी अली खां का।

छाया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में। राजेंद्र कृष्ण की बोल थी और सलील चौधरी का संगीत था। और इस गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब आइए सुनते हैं हमारे बच्चों का कार्यक्रम बाल संग।

0: जय हिंद नन्हे साथियों,
1: जय हिंद मंजरी दी,
0: जय हिंद कंचन दी, कैसी हैं?
1: मैं तो अच्छी हूँ, आप
0: और
1: कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इस सावन का जो मौसम होता है ना कंचन दी, मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे हो जाते हैं, जैसे हमारे नन्हे साथी, हमारे पेड़ पौधे, हमारा मन, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और एक और तरीका है कि जब मन बिना किसी मौसम के भी अच्छा रह सकता है,
1: कैसे?
0: जब हमारे पास हमारा कोई अच्छा सा मित्र होता है। बच्चों, आपने अनुभव भी किया होगा, तो हमारा मन दुखी हो चाहे हम बहुत खुश हों, हमारी खुशी और हमारा दुख तो साझा हो जाता है और हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब भी हमारे साथ हमारा दोस्त होता है, हमारी सहेली होती है, तो मन में बहुत सारी खुशी होती है। मन में कोई गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ भी, वो छोटी बड़ी बातें जो हम अपने शायद पेरेंट्स से नहीं कह सकते, हम अपने टीचर से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त हमारे पास में है तो हम जरूर बिना किसी झिझक के कह दे। खुशी को साझा करने वाला अभी आसपास नहीं है तो भी हमारा मित्र है तो हमें लगता है कि जीवन में सब कुछ पा लिया है।
1: हमारे जब मित्र अच्छे होंगे
0: जी,
1: तभी उनके गुण जो है वो हम में आएंगे और हम अच्छी चीजें सीख पाएंगे। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए नन्हे साथियों, हमेशा अच्छी चीजें सीखना और कुछ क्रिएटिव करते रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल साथियों, जब हम दोस्ती करते हैं ना, तो उसका इतना असर हमारे ऊपर होता है कि जाने अनजाने हम अपने मित्र की ना कॉपी जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि हम उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसके खाने पहनने, हर चीज का ढंग हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आने लगता है।
1: तो हम जब अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारी आदतें भी अच्छी होंगी और हम पहचान पाएंगे कि हमने क्या गलत सीख लिया है और हमें क्या नहीं सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल, मित्रों का चुनाव करते समय साथियों बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे लोगों की संगत में रहें जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, जिससे कि अगर हो सकता है हमारे पास कम भी हो तो उनकी देखा देखी सही, ज्यादा अच्छाई जिसमें हो उसको हम चुने तो अच्छाइयों की संख्या हमारे पास ज्यादा आएगी, थोड़ी बहुत बुराइयां आएंगी तो उसको हम सुधार लेंगे, लेकिन गुणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी फिर।
1: और कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि हमें समझ में आता है कि हमारा दोस्त ही गलत कर रहा है
0: जी,
1: लेकिन हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी अच्छाइयों से अपने मित्र को सुधार भी तो सकते हैं।
0: बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि संगत का मतलब कि अब उसने कुछ बुरी बात की तो हम भी उसके राह पे चल पड़े। तो कंचन दीदी,
1: हाँ?
0: ये तो अच्छे दोस्तों के बारे में बात हो गई, लेकिन कुछ अच्छी आदतें, जैसे हम बात कर रहे थे कुछ अच्छी आदत होती है या अच्छी आदतें होनी चाहिए, तो उसमें एक अच्छी आदत ये भी है कंचन दीदी कि हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमें बहुत सारे नियम होते हैं सड़क पे चलने के, उसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हम सड़क पे चलते समय उसका पालन कर सकें।
1: वो ध्यान देने योग्य जो नियम है उन्हें हम ट्रैफिक रूल्स कहते हैं।
0: जी,
1: हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरफ से जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी चीज ये है कि हमेशा जब भी आप साथ में बैठे हों, आपके पापा, मम्मी, भैया, दीदी कोई भी गाड़ी चला रहा हो, तो ध्यान आपको भी देना है कि लाल बत्ती जब जले, ट्रैफिक रूल्स में ये भी आता है कि जब भी लाल बत्ती जले तो हमें अपनी गाड़ी को रोकना है और बिना हेलमेट के हमें दो पहिया वाहन पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, है ना दीदी?
0: बिल्कुल, और अगर हमारे भैया या दीदी ऐसा कर रहे हैं तो भी हमें उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए कि ऐसा करना गलत है। और साथियों, हमने देखा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि रोड अगर थोड़ी खाली सी होती है तो हमारे कुछ साथी इतनी धुन में चलते हैं कुछ गुनगुनाते हुए कि उन्हें दाएं और बाएं का कुछ याद ही नहीं रहता है, उन्हें लगता है कहीं से भी चलो, सड़क तो अपनी है। लेकिन ये नियम गलत है, जैसा कि कंचन दीदी ने बताया कि दाएं और बाएं का ध्यान रखें, तो जब भी आप चलें, आपको पैदल चलना है तो हमेशा अपने बाएं साइड से ही चलना चाहिए, और जो गाड़ी वगैरह है वो दाएं साइड से आती है, और जब आप वैसे ही अगर रिवर्स में जाएंगे तो वो दाएं में जाएंगे, लेकिन जाते समय आप बाएं से जाएं और वापसी आपकी दाएं से होनी चाहिए।
1: और हमेशा ध्यान दें कि जब भी कोई भी ड्राइव कर रहा है
0: जी,
1: तो वो फोन का इस्तेमाल ना करें।
0: हाँ।
1: अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसे बता सकते हैं कि देखिए, आप अभी इस समय गाड़ी चला रहे हैं, आपको फोन पर बात करना उचित नहीं है।
0: और ये आपके लिए भी है साथियों, क्योंकि अब कल की डेट में आप भी ऐसा करेंगे, आप भी ड्राइविंग सीखेंगे, आप भी गाड़ी चलाएंगे, तो बचपन

0: कहते हैं ना कि बचपन से ही अच्छी आदतों का निर्माण होता है, तो ये बात अपने दिमाग में आप भी बैठा लीजिए कि आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाना क्यों न जानते हो, लेकिन गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और साथ ही ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध भी है।
1: और सबसे बड़ी बात, अगर आप कार में बैठे हैं अपने पापा मम्मी के साथ, यानी कि कोई भी चार पहिया वाहन में आप बैठे हैं, तो सीट बेल्ट की याद हमेशा रखें। पापा मम्मी को भी याद दिलाएं, और अगर आप भी आगे बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और किसी भी तरह का नशा करना भी गलत होता है, ट्रैफिक नियम के खिलाफ है ये।
0: कार में सीट बेल्ट की बात कंचन दीदी ने की, कार में सीट बेल्ट लगा है ना, तो कार को अगर कुछ नुकसान होता है तो आप एकदम से कार से बाहर नहीं आ जाते हैं, आपकी बॉडी जो है सीट से बंधी रहती है, जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा कम से कम हो जाता है।
1: और रास्ते में आपने देखा होगा जीब्रा क्रॉसिंग,
0: जी
1: सफेद सफेद
0: बिल्कुल
1: पट्टियां,
0: बिल्कुल
1: तो उसका भी ध्यान दें।
0: हाँ
1: जब भी आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, और ये आपको तब करना है जब लाल बत्ती पर सारे वाहन अपने स्थान पर रुके हुए हों, तब आप आराम से जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हैं।
0: तो दीदी हमने मित्रता की अच्छी बात की, हमने ट्रैफिक रूल्स को जाना।
2: नन्ही साथियों, आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी है, जो हर साल 23 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये दिन चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है, जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणीय ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
3: तो बच्चों, सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा ना, तो आइए अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया में आपको लेके चलते हैं इस वार्ता के साथ। वार्ता का विषय है अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया, और वार्ताकार है प्रवीण वसंत पटवर्धन।
4: बच्चों, अक्सर बचपन में जब कोई हमसे पूछता है कि बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो हम जवाब देते हैं कि मुझे बड़े होकर चांद पर जाना है। हम में से बहुत से लोगों को बचपन से ही चांद सितारों और अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि वहां की दुनिया यहां से कितनी अलग होगी। आजकल ऐसी बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्म हैं जिनके जरिए हम अंतरिक्ष की दुनिया को देखते और जीते हैं। ये फिल्में देखकर हर कोई उस अलग दुनिया में जाना चाहता है, जहां सब कुछ बिल्कुल अलग और रहस्यमयी है। बच्चों, अंतरिक्ष हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्यों की खान रहा है। वैज्ञानिक जितनी उसकी परत खोलते हैं, उनका आश्चर्य और अंतरिक्ष का रहस्य और अधिक गहराता जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने से आपका कद 3% बढ़ सकता है? जी हाँ, अंतरिक्ष में 6 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई लगभग 3% बढ़ जाती है। दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में जाने पर कद बढ़ जाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपनी वास्तविक लंबाई से 3% ज्यादा लंबे हो जाते हैं। हालांकि ऐसा अस्थायी रूप से ही होता है, और कुछ महीनों के बाद कद पहले जितना ही हो जाता है। बच्चों, सिर्फ कद ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का असर ना होने से कई और अनोखी चीजें भी होती हैं। जब हम धरती पर पानी उबालते हैं तो उसमें कई हजार बुलबुले बनते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। बच्चों, अगर आप अंतरिक्ष में पानी उबालेंगे तो उसमें सिर्फ एक बड़ा सा बुलबुला बनेगा। शोधकर्ताओं के अनुसार यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। इससे प्रेरित होकर वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट के जल्दी ठंडा होने के तरीके तलाश रहे हैं। बच्चों, एक निश्चित ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर ऊपर के बाद आकाश, गगन या नभ समाप्त हो जाता है, तब अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष एक निर्वात अर्थात वैक्यूम है, जहां आप आवाज नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो माध्यम वहां नहीं होता, इसलिए हमें आवाज सुनने में परेशानियां होती हैं। बच्चों, अंतरिक्ष में सिर्फ इंसान ही नहीं बैक

0: बैक्टीरिया में भी बदलाव आते हैं। बैक्टीरिया के बारे में तो तुम जानते ही होगे। कई सालों की रिसर्च के बाद यह सामने आया है कि अंतरिक्ष में बैक्टीरिया और जर्म्स की अनुवांशिकता में बदलाव हो जाता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष में बैक्टीरिया धरती की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। बच्चों, ऐसा मुमकिन है कि आपके फूलों की खुशबू अंतरिक्ष में जाकर एकदम बदल जाए। दरअसल अंतरिक्ष में अलग तापमान, मौसम और कई अन्य चीजों का असर पौधे से पैदा होने वाले तैलीय तत्वों पर होता है। इस वजह से अंतरिक्ष में फूलों की खुशबू बदल जाती है। चांद पर मानव के कदम बहुत पहले ही पड़ चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वालों में हमारे भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को तो आप जानते ही होंगे। बच्चों, अंतरिक्ष में जाने वालों के चंद दृश्य आपने टीवी पर तो देखे ही होंगे। यान से जाना, उड़ते हुए चलना, सब कुछ कितना अलग और अनोखा होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर जाना, अंतरिक्ष के वातावरण में खुद को ले जाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे प्रयासों की साथ साथ गणितीय दक्षताओं की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में जाने के लिए कई वर्षों तक प्रशिक्षण लेना होता है और महीनों तैयारियां चलती हैं। क्या बच्चों, तुम्हें भी जाने का उत्साह है ना? तुम जानते हो ना बच्चों, बृहस्पति सबसे भारी ग्रहों में से एक है। यह हमारे सौरमंडल से 450 प्रकाश वर्ष दूर लेस्त्रेय तारा मंडल का एक सदस्य है और एक तारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिलहाल वैज्ञानिकों के सामने और भी रहस्य खड़े हो गए हैं कि आखिर अंतरिक्ष में इतने हल्के, कम घनत्व वाले ग्रह किस प्रकार बनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की तरह भू ग्रहण भी होता है, जो चंद्रमा से देखने पर मालूम होगा। इसी प्रकार सूर्य भी अपने अक्ष पर पृथ्वी के 25 करोड़ साल में घूमता है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिम सेंचुरी है। बच्चों, इस तरह अंतरिक्ष की दुनिया बहुत ही अनोखी है। अभी वैज्ञानिक इसके कई रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश भारत के भी कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहे हैं।
1: हमारे नन्हे साथी अभी सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया और वार्ताकार थे प्रवीण वसंत पटवर्धन भैया।
2: नन्हे साथियों से थोड़ी और बात कर लेते हैं।
3: हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा समय तो हमारे पास है ही है। अभी
2: समय भी है और हमारे नन्हे साथी हमारे सामने बैठे भी तो हैं।
3: हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई बिल्कुल। बताओ, मैं बात करने में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि अभी तो हमारे नन्हे साथी बैठे हैं, बहुत ही उत्साहित है अपनी प्रस्तुति देने के लिए।
2: तो आइए जानते हैं कि हमारे ये नन्हे साथी क्या कह रहे हैं।
4: मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

0: धन्यवाद।
1: मैं अद्वित कुमार शुक्ला कक्षा 8 का छात्र हूँ और आज मैं आपके समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन

0: को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। उद्याचल मेरा दीप्त भार, भूमंडल वृक्षथल विशाल, भुज परिधि मंद को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, रिघो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिसर संधि मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडक दल लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत हाल देख, पद में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूबे को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकट, टूटेगी भू पर बिजली प्रकट, फरशेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायु श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे सब बेहोश पड़े, सिर्फ दो नरना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, दोनों निर्भय हो पुकारते थे, जय जय जय जय जय जय। धन्यवाद।
1: प्रणाम, मेरा नाम देवांगना भनी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कजरी प्रस्तुत करने

धन्यवाद। आज मैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारे राष्ट्रगीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

0: धन्यवाद।
1: हमारे नन्हे साथियों ने बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई थी, जो उन्होंने हमें सुनाई वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और जो साथी सुन रहे हैं और वो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो वो हमारे वाराणसी स्टूडियो में आ सकते हैं, है ना दीदी?
2: बिल्कुल। और साथियों, हमें आपका इंतजार रहेगा। आप में कुछ भी हुनर है, जैसे कि कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा बोलता है, तो जो भी हुनर है आप में, आइए हमें दिखाइए और अपने साथियों को भी सुनाइए।
1: दीदी, हमने तो बहुत सारी बातें की अपने नन्हे साथियों से, उन्हें अच्छी मित्रता के बारे में भी बताया और ट्रैफिक के कुछ मुख्य नियमों के बारे में भी हमने उनसे बात की, गीत भी सुनाया, कहानी भी सुनाई। लेकिन अब ये घड़ी दीदी भी तो हमसे कुछ कह रही है।
2: बिल्कुल दीदी, कह रही है कि हम लोग जितनी बातें करते हैं, जितनी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो उतनी अच्छी बातों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। यानी कि एक अच्छी आदत यह भी होती है कि समय से सब काम होना चाहिए।
1: हाँ।
2: तो जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत बिल्कुल समय से की, तो कार्यक्रम का समापन भी हम समय से ही करेंगे कंचन।
1: हाँ।
2: दीदी, तो अब आज का पिटारा यहीं पे हम समेटते हैं और साथियों को कहते हैं
1: जय हिंद।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र शिखा श्रीवास्तव और आज लेकर आई हूं त्वचा संबंधी समस्या और इसके इलाज पर जानकारी हमारे विशेषज्ञ के साथ। दोस्तों, त्वचा सिर्फ हमारे सौंदर्य का आईना ही नहीं बल्कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य का संकेत भी देती है। कभी कभी चेहरे पर मुहासे, कभी खुजली, कभी लाल चकत्ते, कभी फंगल इन्फेक्शन तो कभी एलर्जी। त्वचा की ये छोटी छोटी न जाने कितनी समस्याएं कई बार बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इसे पहचाने कैसे कि ये बीमारी है, एलर्जी है या फिर सामान्य सी समस्या, और साथ ही इससे राहत पाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के आरोग्य में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्य जी को। ये BHU वाराणसी में आयुर्वेद विभाग में हैं और आप लोगों की त्वचा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेंगे आपके फोन कॉल के जरिए। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद शिखा जी।
0: हम लोग आगे बातें करें इससे पहले एक श्रोता हमसे फोन से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले उनका फोन ले लेते हैं।
1: जी जी।
0: हेलो।
2: हाँ हेलो, नमस्ते। डॉक्टर साहब यहाँ हैं?
0: हाँ हाँ, डॉक्टर साहब हैं। आज त्वचा रोग पर बात हो रही है सर।
2: मेरा नाम आरसी पांडे है।
0: आरसी पांडे जी, आज हमारे बीच में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्य जी हैं और त्वचा से संबंधित समस्याओं पर बात हो रही है, तो आप डॉक्टर साहब से बात करें।
1: जी बताएं जी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: ये मेरे त्वचा पर जो है जगह जगह इल्ला निकल रहा है
1: जी,
2: और आंख की जो पलके हैं उसके ऊपर कई निकल गए हैं। तो इसका कुछ इलाज है?
1: कब से है ये?
2: ये कई साल भर हो गया
1: जी। आपके बताने के हिसाब से ये वार्ट बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं, तो इसका आयुर्वेद में अग्निकर्म से बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। जी जी।
2: आंख की पलकों पर है?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, अग्निकर्म से हो जाएगा ये
0: जी।
2: अच्छा अच्छा
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ सर, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।
1: जी
0: हेलो।
3: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन है?
3: जी मैं आशीष कुमार, ग्राम भरण जिला जनपद से बोल रहे हैं। मैं
0: आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज त्वचा रोग पर बात हो रही है।
3: जी जी मैम।
0: और डॉक्टर भोलानाथ मौर्य जी जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं हमारे बीच में हैं, आप डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
1: जी बताएं आशीष जी।
3: जी सर, मेरे सर में जो है खुजली होती है
1: जी,
3: और उसी सर बहुत ज्यादा आ जाती है
1: जी।
3: तो सर 5-6 साल से दिखा रहे हैं सर, ये मेरा समस्या ठीक नहीं हो रहा है।
1: रूसी ही है तो ठीक हो जाएगा, कुछ और है तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। आप स्किन में जो छाछ होता है, दही होता है, इसमें एक चुटकी टंकड़ जिसको सुहागा बोलते हैं उसको डालें और हफ्ते में 2 दिन इससे धुले।
3: जी सर।
1: इसको 15 दिन करें, आराम नहीं मिलता तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में मिल सकते हैं।
3: और सर एक फेस वॉश था जो है लगाई थी स्किन के लिए, तो सर मेरे एक साइड जो है सूजन आ गया, अभी तक वो सूजन जा नहीं रहा है।
1: उस केमिकल से या उस फेस वॉश से आपको एलर्जी रही होगी, ठीक है? इस तरह से कोई भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट चेहरे पे, चमड़ी पे नहीं यूज करना चाहिए। अपने चिकित्सक से परामर्श लें। धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद आरोग्य में फोन करने के लिए। सर ये मौसम जो बरसात का चल रहा है, इसमें त्वचा की समस्या बहुत देखने को मिलती है, किस तरह की समस्याएं सामने देखने को मिल रही हैं?
1: वर्षा ऋतु में या बरसात में हमारे वातावरण में नमी बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से हमारे जो पसीना होता है वो सूखता नहीं है
0: जी,
1: और वो फंगल ग्रोथ के लिए वातावरण होता है। तो बरसात में जब भी हमें पसीना होता है तो उसको कोशिश करना चाहिए सूखने का मौका देना चाहिए। सूती और कपड़े यूज करने चाहिए और डस्टिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पसीना जो होता है वो सूखता नहीं है, तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके बाद भी हो रहा है तो अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं और उसके अनुसार उसका इलाज करा सकते हैं।
0: अच्छा सर, एक प्रश्न और मन में आ रहा है,

0: दांत खाज खुजली है, इस मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन क्या एक ही चीज है या इसमें अंतर है?
1: दांत खाज खजुली ये आम भाषा के शब्द हैं।
0: सर एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं, फिर
1: बिल्कुल।
0: इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हेलो।
2: हाँ, गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग मॉर्निंग
0: मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं सर आप?
2: मैं रमेश कुमार पासवान बोल रहा हूँ, जमानिया रेलवे स्टेशन से।
0: जी, अपनी समस्या बताएं सर।
2: हाँ डॉक्टर साहब, ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये चर्म रोग जो होता है
1: जी,
2: ये 40-45 के बाद क्यों उभर जाता है? आखिर इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है?
1: 40-45
2: खान पान में क्या इसका बर्ताव किया जाए कि न हो?
1: जी जी, 40-45 जाते जाते शरीर में बहुत सारी चीज एजिंग प्रोसेस, जो उम्र के हिसाब से क्षय होता है शरीर का, वो शुरू हो जाता है और अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसके अनुसार से रोग शरीर में होने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए सामान्य हेल्दी आहार विहार होना चाहिए। चर्म रोग के संबंध में बोले तो इसमें समय समय पर आयुर्वेद की दिनचर्या में बताएं तो इसमें प्रतिदिन अभ्यंग होना चाहिए, जिसको हम मसाज बोलते हैं, प्रतिदिन अभ्यंग होना चाहिए
2: जी,
1: तो उससे हमारी जो स्किन की ग्लो है वो बनी रहती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आहार विहार और त्वचा की देखरेख, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।
2: हाँ, खान पान में क्या बर्ताव किया जाए?
1: खान पान में हेल्दी डाइट होनी चाहिए, फल सब्जी सलाद की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट फूड और जो केमिकल प्रिजर्वेटिव कंटेंट है इससे हमें बचना चाहिए। जैसे अभी युवाओं में देखा जाता है, जैसे ही वो फास्ट फूड शुरू करते हैं वैसे उनको मुहासे, एक्ने या इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं, तो जैसे ही उसको ये चीज बंद कराया जाता है वैसे उसके वो सिम्टम कम हो जाते हैं।
2: जी,
1: इम्यूनिटी सबसे अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल से आती है, हमारी जो दिनचर्या है, सुबह उठना, व्यायाम करना, अच्छा आहार विहार, फल सब्जी सलाद का अधिक उपयोग करना से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दवाई तो हमारे मरीजों को सपोर्ट करने के लिए होती है।
0: एक और फोन आ रहा है सर
1: जी।
0: हेलो।
3: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
3: आजमगढ़ से विनीता दुबे बोल रही हूँ।
0: विनीता दुबे जी,
3: जी।
0: आजमगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में। आपने पहली बार फोन किया है?
3: हाँ, आज पहली बार फोन किया है।
0: अच्छा जी, तो आज त्वचा रोग पर बात हो रही है और जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्य जी हमारे बीच में है, तो आपकी जो भी समस्या हो डॉक्टर साहब से साझा कर लें।
1: जी विनीता जी बताएं।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरे हाथ में कोहनी और कंधे के बीच में जो उसमें दाना दाना निकल आता है
1: जी, कितने दिन से है
3: ये? गर्मी में, हर साल गर्मी में और ठंडी में हो जाता है
1: जी।
3: कुछ दिनों तक रहता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें खुजली होती है।
1: एक बार दिखाकर परामर्श लें, हो सकता है कुछ अलग बीमारी हो जिसकी वजह से देखने पे ही पता चलेगा वो किस तरह की परेशानी आपकी चर्म रोग की है।
3: बस सूखी रहती, कुछ खुजली बस होता है उसमें और कुछ नहीं, जैसे पस उस नहीं निकलता है।
1: जी जी, एक बार देखने पे हो सकता है वो सोरियासिस हो सकता है वो एक्जिमा हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो, तो एक बार देखने पे ये पता चल पाएगा कि आपको किस तरह की परेशानी है और क्या इलाज की जरूरत है।
3: नमस्कार।
0: हाँ सर, हम लोग बातें कर रहे थे कि दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन में क्या अंतर है।
1: दांत खाज खुजली ये आम भाषा के बोलचाल के शब्द है, फंगल इन्फेक्शन ये मेडिकल टर्म है, चिकित्सीय भाषा है। दांत खाज खुजली ये तीनों इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग है। दांत को सामान्य भाषा में ये फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं, खाज लाइक एन एप्लाइनस जैसी चीजें हैं, और खुजली जिसको हम एस्केबीज कहते हैं
0: जी।
1: तीनों अलग अलग चीजें हैं। फंगल इन्फेक्शन में अलग ट्रीटमेंट होता है और लाइक एन एप्लाइनस का अलग ट्रीटमेंट है, अलग इलाज है, और खुजली एस्केबीज का अलग इलाज है। तीनों के अलग अलग इलाज है, तीनों ठीक होने वाली बीमारियां हैं और प्रॉपर समय से इलाज करने पर ठीक हो जाती है
0: जी। सर अगर इस तरह की कोई समस्या होती है फंगल इन्फेक्शन जैसी, तो कैसे पहचाने कि ये एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर किसी और गंभीर बीमारी का संकेत है?
1: एलर्जी को हम इस तरह से देखेंगे, एलर्जी में दो तरह की हो सकती है। हो सकता है कुछ हमारे खाने पीने में चीजें आ रही हो जिसकी वजह से वो हमारे लक्षण बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उसको हम बंद करते हैं वैसे ही वो लक्षण कम होने लगते हैं, और अगर बिल्कुल बंद कर दिया है तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो फंगल इन्फेक्शन है बिना इलाज के, प्रॉपर इलाज के नहीं खत्म होगा, और उसमें लाल चकत्ते हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, बहुत खुजलाने पर उसमें से रक्तस्राव हो सकता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर उसमें मवाद वगैरह भी पड़ सकते हैं।
0: अच्छा, बहुत लोग त्वचा से संबंधित अगर कोई समस्या होती है डॉक्टर साहब, तो घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते हैं, तो ये घरेलू

0: वयस्कों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कारगर साबित होती हैं और कौन सी चीजों को नहीं करना चाहिए?
1: घरेलू नुस्खों में बहुत शॉर्ट टर्म कुछ ही दिन के आप यूज करें, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। घरेलू नुस्खों में एक ही चीज हो सकती है, अगर वो एलर्जिक है और हमें इंडोजिनस, अगर खान पीन के द्वारा जो एलर्जी हो रही है अगर उसको हम रूल आउट कर लेते हैं, उसको हम छांट लेते हैं, तो वो अपने आप ठीक हो सकता है। घरेलू नुस्खों में बस इतना ही है हुआ।
0: जी जी सर, हमारी बातें भी हो रही हैं और लगातार श्रोताओं के फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और फोन आ रहा है, श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं सर?
2: हाँ मैम, मैं राजकुमार पटेल बोल रहा हूँ। मैं इधर अपने बनारस देवली ग्राम सभा से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा राजकुमार पटेल जी, आज त्वचा रोग पर बात हो रही है, त्वचा से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो हमारे बीच में डॉक्टर भोलानाथ मौर्या जी हैं, आप उनसे सलाह ले लें।
1: बताएं राजकुमार जी।
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं 35 साल हमारी उम्र है, हमको ना 15 साल से सोराइसिस है
1: जी।
2: तो सर जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एलोपैथी में इसका इलाज है कि नहीं?
1: एलोपैथिक में दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक हो जाता है, फिर जैसे ही दवाइयाँ आप बंद करते हैं फिर से हो जाता है। इसको आप विधिवत ठीक करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म कराना चाहिए, उससे परमानेंट ठीक हो सकता है।
2: अच्छा, उससे ठीक हो जाएगा पूरी तरह से?
1: बिल्कुल, उसमें आहार विहार और पंचकर्म किया जाएगा, आपका आहार में डाइट मॉडिफिकेशन किया जाएगा, खाने पीने की चीजें चेंज बताई जाएंगी क्या नहीं खाना है जिससे बढ़ता है, और उसमें एक पंचकर्म प्रोसीजर होता है आपके शरीर के अनुसार। पंचकर्म में बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, जो आपके हिसाब से सुटेबल होगा वो किया जाएगा और परमानेंट ठीक हो सकता है। आप चिकित्सक से मिल लें।
0: धन्यवाद सर। ये सोराइसिस की जो बात आप बता रहे हैं, अब श्रोता ने कहा कि 15 सालों से है, तो ये 15 सालों से क्या ये बढ़ता नहीं है, एक कंटिन्यू वैसे ही फॉर्म में रहता है?
1: ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अगर जिस आहार विहार या जिस विरुद्ध आहार विहार की वजह से बढ़ रहा था, अगर हम उसका लगातार सेवन करते रहेंगे तो वो हमारे शरीर में बढ़ता जाएगा। सोरियासिस तो चर्म रोग के साथ साथ सोरियाटिक अर्थराइटिस भी हो जाती है, जो हमारे ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर लेती है और चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है।
0: जी, तो इसका लक्षण क्या होता है, कैसे शुरुआत में पता चलता है कि हमको ये हो गया है?
1: छोटे चकत्ते होंगे
0: जी
1: आप उसको उसमें खुजली होगी और उसको हम थोड़ा सा खुजलाएंगे तो उसमें डैंड्रफ जैसा रूसी चीज जैसी चीज निकलेगी।
0: जी
1: सर्दियों में थोड़ी सी, गर्मियों में थोड़ी सी कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में त्वचा हमारी थोड़ी सी रूखी होती है।
0: जी जी
1: और जनरली पेट पे, पीठ पे, हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकता है।
0: जी जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। एक श्रोता का और फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो
3: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बताएं सर कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
3: जी मैम, हम नरेंद्र कुमार बोल रहे हैं, जलालपुर जौनपुर से।
0: नरेंद्र कुमार जी, पहली बार फोन किया है सर?
3: हाँ हाँ जी मैम, पहली बार है।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। आज त्वचा रोग पर बात हो रही है और जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्या जी हमारे बीच में हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात कर लें।
1: जी बताएं
3: सर, ये पैर में ना हल्का हल्का जैसे दाग जैसा हो रहा है, वाइट वाइट
1: जी,
3: और चेहरे पर जो है ब्लैकपन आ जा रहा है
1: जी।
3: 50 साल की लगभग उम्र है सर, 52 साल।
1: और कोई बीमारी पहले की?
3: पहले से सर स्पाइन में दिक्कत है, तो दवा चल रही है आपके यहाँ से आयुर्वेद से ही।
1: जी ठीक है, तो आपको
3: आयुर्वेद से दवा चल रही सर।
1: जी जी
0: अच्छा।
1: तो आपको चेहरे का अलग बता रहे हैं, चेहरे पे जो है उसको नेत्र छाई और झाई बोलते हैं, और जो पैर में है वो कुछ और हो सकता है। एक बार आप परामर्श ले लें चिकित्सक से, दोनों ठीक हो सकता है।
0: धन्यवाद सर। आज के समय में जब किशोरावस्था से लोग कॉस्मेटिक्स का ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका हमारी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप क्या सलाह देंगे कि इसका प्रयोग कितना उचित है?
1: जो कॉस्मेटिक बहुत रेगुलर यूज नहीं करना है, और कोई भी कॉस्मेटिक रेगुलर यूज नहीं करना है, और हमारी स्किन के हिसाब से, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, बैलेंस स्किन है, इसमें से किस तरह की स्किन है उसके अनुसार यूज करना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम कोई भी नई कॉस्मेटिक यूज करते हैं उससे हमें एलर्जी हो जाता है, तो उसको हमेशा के लिए मुझे परेशानी दे जाता है, इसलिए कोई भी कॉस्मेटिक कम से कम यूज करना चाहिए। पहले एक जगह कहीं लगा के टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उपयोग करना चाहिए।
0: हमारी दिनचर्या का सर हमारी त्वचा के स्वास्थ्य से क्या लेना देना है, ये हमारी श्रोताओं को बताएं।
1: दिनचर्या का शरीर पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। दिनचर्या में सुबह से सोकर जागने से लेकर शाम सोने तक की

0: जो हमारी प्रक्रिया है, नॉर्मल रूटीन लाइफ है, वो दिनचर्या में आएगी।
1: जी
0: हमने जो दिन भर के कार्यक्रम, जैसे हमने सुबह सोकर उठे, उसके बाद पानी पिया, फिर ब्रश किया, फ्रेश हुए, फिर आहार विहार में हेल्दी डाइट लिया, कुछ एक्सरसाइज किए, योगासन किए, प्राणायाम किए, फिर अपने वर्क प्लेस पे गए, फिर वहां से आके डाइट लिया, खाना पीना लिया, उसके बाद फिर हम सोनेंगे। ये पूरा दिनचर्या में है।
1: जी
0: दिनचर्या में आयुर्वेद में देखें तो दिनचर्या में अभ्यंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है त्वचा के लिए।
1: जी
0: हमें प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए, किसी को तिल तेल से करना चाहिए, किसी को ड्राई पाउडर मसाज कर सकते हैं, ये जिसकी जैसी स्किन है उसके अनुसार उसको अभ्यंग करना चाहिए।
1: जी
0: और उसके साथ साथ हमें फिजिकल एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम करने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे जो श्वेत ग्रंथियां हैं, जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियां हैं, उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे स्किन के वो बाहर निकलते हैं और हमारी त्वचा में खून का दौड़ान अच्छा होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा हेल्दी रहती है।
1: जी जी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं त्वचा के स्वास्थ्य से संबंधित। अच्छा, एक चीज, जैसे आपने ये मसाज की बात की है कि त्वचा पर मालिश जरूर करनी चाहिए, बहुत लोगों को ऑयल लगाते ही बहुत सारी त्वचा संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में वो मसाज कैसे करेंगे?
0: नहीं, एक्चुअल में जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, किसी को किसी चीज से भी एलर्जी हो सकती है।
1: जी
0: पहले हमें कोई नया प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तो कहीं एक जगह पे कम क्वांटिटी में, कम स्पेस पे लगा के यूज कर लें। अगर वो सुटेबल है, ठीक है, तो ही हमें पूरे शरीर में यूज करना चाहिए। और तिल तेल अभ्यंग के लिए सबसे अच्छा तेल है।
1: जी जी
0: सामान्यतः तिल तेल अभ्यंग के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन अभी जो बाजारीकरण है, जिसमें वो बहुत सारे एडल्ट्रेशन, बहुत सारे केमिकल मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी और त्वचा की परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए शुद्ध तिल तेल त्वचा के लिए सबसे अच्छा अभ्यंग का तरीका है।
1: सर, अभी और आगे बातें करेंगे इस विषय पर, एक फोन ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैडम, मैं
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: चंदौली काटा से बोल रहा हूँ, विवेक मौर्या।
1: विवेक मौर्या जी, जी, बताएं, आज त्वचा रोग पर बात हो रही है और त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्या जी हमारे बीच में हैं, आप बात कर ले डॉक्टर साहब से।
2: प्रणाम डॉक्टर
0: जी, नमस्कार, विवेक जी बोले।
2: सर, जो जांघ में जैसे साइड में ये चकत्ता चकत्ता जैसा हो जाता है, कभी काला हो जाता है,
0: जी,
2: तो ये सर क्या माना जाएगा? मतलब जीमा माना जाएगा या फंगस माना जाएगा, क्या माना जाएगा?
0: अगर बिल्कुल रिंग शेप में है, गोला गोला है, या उसकी मार्जिन गोला में है, किनारा किनारे पे उभार है, तो ज्यादा उम्मीद है कि ये आपका फंगल इन्फेक्शन होगा। जी, एक्जिमा में ब्लैक होगा और पूरी की पूरी जितना एरिया इफेक्टेड होगा, सारा का सारा में उभार होगा, तो ज्यादा उम्मीद है आपको फंगल इन्फेक्शन है। ये आप दिखाकर, चिकित्सक से दिखाकर परामर्श ले लें, उसमें उचित इलाज
2: क्रीम
0: मिल पाएगा।
2: वगैरह लगाया जाता है तो सही हो जाता है?
0: जी, सभी क्रीम
2: और
0: अच्छी नहीं
2: नमी जब
0: होती,
2: रहेगी मौसम में तो और ज्यादा परेशान करेगा।
0: बिल्कुल बरसात का मौसम त्वचा रोग के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। इसमें जो हमें पसीना होता है, ये सूख नहीं पाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। आप एक बार दिखा कर परामर्श ले लें, उचित इलाज हो जाएगा आपका। नमस्कार,
1: धन्यवाद विवेक जी। सर, अभी इसके पहले हम लोग मसाज की बात कर रहे थे, तो जब नवजात शिशु की जब बात होती है, वो बच्चा जब जन्म लेता है, तो डॉक्टर उसे मालिश करने के लिए मना करते हैं, तो ऐसा क्यों है?
0: दो चीजें हैं। जो हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम मसाज नहीं करना, उसके पीछे कारण क्या है कि जो हम मसाज के लिए, अभ्यंग के लिए जो हम तेल या कॉस्मेटिक यूज करने जा रहे हैं, बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, जिसपे हमें एलर्जी हो जाता है या रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है,
1: जी
0: इसकी वजह से वो अभ्यंग मना करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में अभ्यंग करना है हमें, जो अभ्यंग करने के लिए तिल तेल सबसे अच्छा तेल है। आप उसको एक दो जगह लगाएं, तिल सेल से रिएक्शन नहीं होगा, जनरली नहीं होता है, कभी कभी किसी को हो सकता है, अलग बात है, लेकिन उसको भी जैसे पैर में या एक जगह पे पहले एक दो दिन लगाकर देख लें, उसके बाद ही पूरे शरीर पे यूज करें। अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग बहुत अच्छी चीज है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए।
1: जी एक प्रश्न और मन में आ रहा है, वो श्रोताओं का भी प्रश्न होगा, हो सकता है, कि अगर त्वचा पर कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, दाने या चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, या किसी प्रकार का संक्रमण दिखाई दे रहा है, तो क्या ये दूसरी किसी अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है?

0: त्वचा पे अगर हमारे चकत्ते दिख रहे हैं तो एक दो चीज हो सकती है, या तो एलर्जिक होगा या तो वो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर होगा,
1: जी
0: वो इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक थोड़ी बहुत क्षमता कम है, जिसकी
1: जी
0: वजह से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। एलर्जी हो रही है तो ये हम जो एक्सोजेनस या एंडोजेनस एलर्जी हो रही है खाने से या बाहर वातावरण से किसी से संपर्क में आने से, उस चीज को हम कट ऑफ करेंगे, बंद करेंगे तो एलर्जी हमारी ठीक हो सकती है।
1: एक फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं।
0: जी
1: हेलो।
2: हाँ प्रणाम साहब, हम विजय शंकर वर्मा जो है बलिया से बोल रहे हैं।
1: जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है। और त्वचा रोग पर बात हो रही है, आप डॉक्टर साहब से बात करें।
2: पीठ में जो है ना लाल रंग का जो है उनसी टाइप का निकल जाता है,
0: जी
2: नहाने पर जो है दर्द करता है, बहुत जो है दर्द होती है।
0: कितना उम्र होगा आपका,
2: है?
0: उम्र कितनी होगी आपकी,
2: उम्र 60 साल।
0: कोई और बीमारी है
2: ना, और कोई बीमारी तो नहीं है।
0: ज्यादा?
2: ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट ग्लैंड का।
0: जी ज्यादा उम्मीद लग रही है कि ये साधारण सा जो फुड़िया होती है उस तरह का चीज है।
2: असाधारण होता है जो है चकत्ता टाइप का, लाल रंग का रहता है,
0: जी आप एक बार
2: जैसे जुलपित निकलता है उस तरह का।
0: आप अपने स्थानीय चिकित्सक से एक बार मिल लें और दिखाकर
2: हाँ,
0: उसका इलाज कराएं, उचित परामर्श आपको दिया जाएगा।
1: एक समस्या गोरखुल वाली होती।
0: उसको आयुर्वेद में कदर बोलते हैं, अंग्रेजी में कार्न बोलते हैं और आम भाषा में गुरुकुल बोलते हैं।
1: हाँ, तो गुरुकुल की समस्या क्यों हो जाती है, किस कारण से, किस चीज की कमी से हो जाती है, और ये ठीक कैसे होगी?
0: गुरुकुल का कारण है कभी हमारे छोटे मोटे चीज कुछ चुभ गए, उसके बाद वहां पे हमारी थोड़ी सी स्किन की ग्रोथ तेज होने लगती है,
1: जी
0: जिसकी वजह से गुरुकुल कार्न या कदर हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से उसमें सर्जरी करके निकाला जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है, सर्जरी किया जाता है।
1: जी
0: आयुर्वेद में इसको अग्निकर्म से ठीक किया जाता है और बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है,
1: जी
0: अग्निकर्म विधि से ठीक हो जाता है।
1: जी एक फोन और आ रहा है सर।
0: जी
1: हेलो।
3: हाँ मैम नमस्कार, मैं आलोक बोल रहा हूँ चकिया चंदौली से।
1: अच्छा आलोक जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार फोन किया है क्या?
3: हाँ मैडम पहली बार किए हैं।
1: जी, आज त्वचा रोग पर बात हो रही है और जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोलानाथ मौर्या जी हमारे बीच में हैं। आप अपनी समस्या डॉक्टर साहब को बताएं।
3: हाँ डॉक्टर प्रणाम।
0: नमस्कार आलोक जी, बताएं।
3: सर हमें पूछना चाहते हैं कि त्वचा रोग किस मौसम में ज्यादा होता है?
0: सबसे ज्यादा बरसात वाले सीजन में ज्यादा होता है।
3: जी सर।
0: जी इसी वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा होती है।
3: सर त्वचा रोग को ना हो इसके लिए क्या करें सर?
0: बरसात में जो त्वचा रोग होता है इसके लिए हमें सूती कपड़े पहनने हैं,
3: जी सर।
0: पसीना सूखने के लिए इंतजार करना चाहिए। जी
3: जी सर।
0: डस्टिंग पाउडर वगैरह यूज करना चाहिए।
3: खान पान का भी कुछ रोल होता है सर?
0: बिल्कुल, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, सामान्य बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फल सब्जी सलाद की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, पर्याप्त एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारे थोड़े से पसीना होगा तो जो स्वेट ग्लैंड से जो हमारे टॉक्सिन्स हैं कुछ उधर से निकलेंगे, तो हमारे
3: जी सर।
0: जो स्वेट ग्लैंड हैं उसके पोर खुल जाएंगे,
3: जी
0: ठीक
3: सर।
0: है, वास्कुलरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी एक्सरसाइज से, तो ये और साथ साथ अभ्यंग कर सकते हैं, तो अभ्यंग भी बहुत अच्छी चीज है, उससे हमारा सर्कुलेशन स्किन का मसल्स का बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा अच्छी और हेल्दी रह सकती है।
3: अभ्यंग हम नहीं समझ पाए सर।
0: अभ्यंग अंग्रेजी में मसाज बोलते हैं, हिंदी
3: जी
0: में
3: सर।
0: आयुर्वेद में अभ्यंग बोलते हैं, मसाज
3: जी सर।
0: लेना चाहिए।
3: और सर जैसे कि स्किन डिजीज में रिंग वर्म हो जाता है तो जल्दी सही नहीं होता है, दवाइयों से भी नहीं सही होता है सर?
0: नहीं, उसमें रिंग वर्म थोड़ा सा परेशान करता है,
3: जी
0: तो
3: सर।
0: उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं, तो जो एंटी फंगल औषधियां होती है वो उसके साथ साथ आयुर्वेद की दवाइयां भी दी जाती हैं, तो जड़ से ठीक हो सकता है।
3: अच्छा सर, ठीक है सर, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद सर। त्वचा पे सफेद दाग का हो जाना, ये किस कारण से होता है और ये क्या सही हो सकता है पूरी तरह?
0: सफेद दाग जो हमारी त्वचा के लिए रंग के लिए जिम्मेदार है मिलानिन,
1: जी
0: बनना कम हो जाता है या नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो वहां की त्वचा सफेद हो जाती है।
1: जी
0: ये कोई इन्फेक्टिव बीमारी नहीं है, छुआछूत वाली जैसी बीमारी नहीं है, ये हमारे जीन लेवल से या वहां से शुरू होता है, और वो मिलानिन जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार मिलानिन पिगमेंट है उसकी बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सफेद दाग हो जाते हैं।
1: जी और बहुत सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता।
0: जी शुरू में जैसे ही सफेद दाग दिखता है उचित इलाज लेने पर यह ठीक हो जाता है, पुराना

0: होने पर ठीक होना थोड़ा सा कठिन होता है, उसको हम कृच साध्य बोलते हैं
1: जी जी
0: या असाध्य बोलते हैं।
1: अच्छा जी, शरीर पे बहुत ज्यादा इल्ला निकलना या फिर मस्से निकलना, एक उम्र के बाद बहुत लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है कि छोटे छोटे मस्से बहुत ज्यादा जगह निकल रहे हैं या तेल निकल रहे हैं, तो ये किस कारण से होता है और इसका क्या समाधान है सर?
0: इल्ला भी अगर हम देखें तो जो वायरस बीमारी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार है, तो ह्यूमन जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है या वो उस वायरस के लिए जिम्मेदार है, तो उस वायरस की वजह से हमें इल्ला हो जाते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से उसमें लेजर थेरेपी से उसको जला दिया जाता है, आयुर्वेद में इसको अग्निकर्म से ठीक किया जाता है, साथ साथ न होने के लिए कुछ उचित रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो उसके लिए कुछ आहार विहार और ये चीजें बताई जाती हैं और ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है।
1: बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने श्रोताओं को दी हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम त्वचा को अपने स्वस्थ रख सकते हैं?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हेल्दी आहार विहार, पर्याप्त एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और त्वचा की देखभाल के लिए अभ्यंग, ये सभी मिला के बहुत अच्छा हमारी त्वचा के लिए हेल्दी होती है।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
0: हमें प्रतिदिन या सप्ताह में 2 दिन अभ्यंग करना चाहिए, पर्याप्त फल फूल सब्जी सलाद लेना चाहिए, किसी के बताए हुए नुस्खों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई भी आप नया यूज कर रहे हैं तो उसको कहीं पे चेहरे को छोड़ के कहीं एक जगह पे लगा के देख लें, आपके लिए एलर्जिक नहीं हो तो आप उसको शरीर में यूज करें, और बहुत हार्ड सोप या बहुत हार्ड केमिकल नहीं यूज करना चाहिए। पर्याप्त आहार विहार, पर्याप्त एक्सरसाइज, योगासन, पर्याप्त निद्रा, ये हमारे त्वचा के लिए अभ्यंग, ये हमारे त्वचा के लिए नटसेल में अच्छे पॉइंट्स हैं।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके डॉक्टर भोलानाथ मौर्या जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए और त्वचा से संबंधित इतनी समस्याओं का श्रोताओं के कॉल लेकर इतना अच्छा समाधान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये बात तो साफ हो गई कि त्वचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई से रहें, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, पानी खूब पिएं, संतुलित खान पान अपनाएं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और फिर कोई समस्या आती है तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ तन और खुशहाल मन के साथ जीवन बिताइए। अगली बार फिर एक विशेष विषय के साथ भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए और सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था त्वचा संबंधी समस्याएं और उनका इलाज। विशेषज्ञ थे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य, इनसे बातचीत की शिखा श्रीवास्तव ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर एक साथ उपलब्ध हैं। वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: बोलना,
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।

0: Paul, colpa te.
1: Se vuoi.
2: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
3: मुबारक जी,
2: दिलशाद जी आज आपका फोन लग गया, बहुत खुशी होती है हमें भी जब आप जैसे इतने पुराने अनुभवी और तजुर्बेकार श्रोता हमारे प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को दुश्वारी तो होती है, इतनी भीड़ है इस प्रोग्राम में जी। और कैसे हैं?
3: अच्छे हैं, ठीक
2: है। मन मिजाज ठीक है आपका? थोड़ा सा मन मिजाज इसलिए हमने कहा कि कई बार होता है कि मान लीजिए एक आध हफ्ते पत्र न भी शामिल हो तो कुछ जैसे श्रोता हैं, जैसे आप हैं, सुरेश जी हैं, रतिनाथ हैं, ये लोग हर हफ्ते भेजते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि हर हफ्ते अगर ये 4-5 मेल रख लिए जाएं तो बाकी फिर श्रोताओं को अवसर नहीं मिल पाएगा। बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, ये आप ख्याल रखते हैं। हालांकि जब आप लोग कोई शिकायत करते हैं तब हम देखते हैं कि पिछली बार कब शामिल हुआ है, तो कई बार ये होता है कि 4 हफ्ते नहीं होता है, 2-3 हफ्ते हो जाते हैं, ये हो सकता है। दरअसल जब हम लोग 8-10 मेल छांटते हैं लाइन से तो उसमें कई बार 3-4 मेल रह जाता है, तो इसी तरह से वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और इसी तरह से उसमें तो कभी नहीं होता, देखिए व्हाट्सएप में जब आपका नंबर और नाम आता है तो जरूर शामिल होता है, अगर हम बैठे हैं तो कोई व्हाट्सएप बचता नहीं है, ये तो जान लीजिए। हाँ, और सब अच्छे से हैं? प्रोग्राम बढ़िया लग रहे हैं आपको, नए दौर के, नए जमाने के? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखिए जमाने पर और दौर पर तो हमारा वश नहीं है।
3: आपसे एक बात कहनी थी।
2: जी बताए।
3: वाराणसी वाइज में जो नाम बोले जाते हैं कि हमारे नमस्ते स्वीकार करें, ऐसे ये तो हमको फरमाइशी लगता है, खाली नाम बोले जाते हैं, कुछ अपने ख्याल थोड़ा सा एक लाइन दो शब्द
2: कहें,
3: वही पत्र स्वामी, वही मेल स्वामी किया जाए।
2: ये वाराणसी वाइब्स में जो फेसबुक पे होता है।
3: जी जी जी।
2: अब उसमें देखिए, उसमें भी हमें लग रहा है ना, हर पूरे देश में 50-60 करीब ऐसे श्रोता हैं जो देश के हर केंद्र पे, हर फेसबुक पेज पर अपनी टिप्पणी दिन भर लिखते रहते हैं।
3: हाँ, वो तो देखते रहते हैं।
2: और उनके पास वो आइटम है लिखा हुआ व्हाट्सएप पे या अपने मोबाइल पे, और उसको वो पेस्ट कर देते हैं, वो किसी भी केंद्र का नाम हो, या बहुत से आजकल तो ऑनलाइन रेडियो भी चल रहे हैं जो फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे रेडियो चलते हैं, वहां भी वो लोग वही मैसेज पेस्ट कर देते हैं।
3: सर हम तो सोच रहे थे कि हम ही जानते हैं।
2: नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो हम तो पूरे नजर रखते हैं इस सिनेरियो पे, क्योंकि रेडियो हमारे लिए इंटरेस्ट का फील्ड है, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें वही श्रोता हैं, वो झारखंड के हों, आसाम के हों, गुजरात महाराष्ट्र के हों, जो पूरे देश भर के, हमें लगता है वो सुनते भी नहीं है ये प्रोग्राम के, उन्होंने कहाँ कहाँ नाम भेजा है अपना,
3: कहाँ कहाँ नाम भेजा है।
2: जी जी, और यही वजह है दिलशाद जी कि व्हाट्सएप में क्या होता है कि 2400 घंटे 7 दिन हमारे यहाँ व्हाट्सएप आते रहते हैं, प्रोग्राम हो न हो और फिल्में उसमें शामिल हो न हो, कुछ ऐसे श्रोता हैं जो भेजते ही रहते हैं दिन भर। उन्हें मालूम भी नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, उसमें करना क्या रहता है,
3: करना क्या है।
2: चलिए, ये कि देखिए आप खुद को समझा सकते हैं, जमाने को नहीं समझा सकते।
3: हाँ, हाँ, ये तो
2: है। जी, और क्या हाल है, आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें?
3: फिल्म है नियाज नमाज का, सुनवा दीजिए।
2: नियाज और नमाज की कवाली क्या?
3: कवाली सुनवा दीजिए।
2: ए मोमिनो, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं, यह कवाली है और श्याम जी घनश्याम जी का संगीत है, नियाज और नमाज है फिल्म का नाम, गीत आप तक पहुंच रहा है यानी कव्वाली। बहुत शुक्रिया दिलशाद जी।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर मैं ग्राम लालू पोस्ट मेघा जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या हालचाल है, आगरा में हैं आप?
1: जी सर ग्राम से लोकल से बिलोंग करता हूँ।
0: जी जी, और आपके गाँव में आप किस काम काज में लगे हैं, खेती बाड़ी होती है?
1: जी खेती बाड़ी भी होती है सर।
0: किस चीज की हो रही है और आप जैसे अभी बारिश कैसी है आपके यहाँ?
1: बारिश सर ऐसे ही होती है, रुक रुक के हो रही है सर।
0: हाँ इधर हमारे यहाँ भी एक दो दिन ही कायदे की बारिश हुई है, वरना फिर तो वही थोड़ा सा बारिश होती है फिर तेज धूप निकलती है। और हमारे केंद्र से जुड़ाव कैसा हुआ, आपका प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको?
1: जी सर मैंने आपका सुना था न्यूज ऑन एयर पर।
0: जी
1: अच्छा लगा सर मुझे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आजकल तकनीक का युग है और वेब्स OTT हो, न्यूज ऑन AIR ऐप हो या DTH हो, देश दुनिया के कोने कोने तक प्रोग्राम पहुंच रहे हो, नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं, हमें भी खुशी होती है।
1: जी सर मुझे आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर।
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैं ट्राई कर रहा था पर फोन लगता नहीं, तो बहुत आपका श्रोता को प्यार इतना है कि मैं खाली नहीं बैठती।
0: जी जी बिल्कुल, हम तो हर श्रोता को बराबर एहतराम करते हैं और बराबर सम्मान देते हैं। आपका कामकाज किस चीज का है वहाँ पर?
1: जी सर मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कपड़े की कंपनी में।
0: जी जी जी,
1: कपड़े की क्वालिटी चेक करना होता है।
0: जी जी, और अब तो जैसे आगरा वो जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, पिछली दफे कब आप गए थे ताजमहल के करीब?
1: जी सर ताजमहल तो हम जब नाइन्थ में पढ़ते थे जब थे। एक बार ही गए हैं सर, वो भी साइकिल से गए थे, 22 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे यहाँ से।
0: वाह।
1: और साइकिल से गए थे हम सभी मित्र, हमारे साथी थे, एनुअल फंक्शन था कॉलेज का।
0: जी जी, साइकिल चला करके 22 किलोमीटर आप गए ताजमहल देखने?
1: जी, और वो भी फ्री में गए थे सर, कोई टिकट नहीं थी। फ्राइडे को क्या ना फ्री होता है। तो हम फ्राइडे को गए थे।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद आप इतने समय तक ताजमहल नहीं गए? अच्छा कई बार क्या होता है कि दोस्त मित्र या रिश्तेदार आते हैं घूमने, तो उनको घुमाने दिखाने ले जाना पड़ता है।
1: जी जी।
0: अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें
1: सर? एक गाना सुनना

0: पूछना आपको, आकाश हमारे परिवार को जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, मेरी तरफ से जितने भी आने वाले त्योहार रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर।
1: जी आपको भी।
0: जी एक गाना सुनना था, हरे रामा हरे कृष्णा। आप कहें तो दो लाइन जरा गाके।
1: जी बिल्कुल यकीनन, स्वागत है।
0: फूलों का ताजों का।

0: कहना है।
1: अच्छा गाते हैं आप तो क्या कॉलेज वगैरह में गाया है आपने क्या?
0: जी एनुअल फंक्शनों में होता है, गाते हैं, तो कंपनी में भी गाता हूँ सर,
1: जी
0: वो ना
1: जी
0: मैं अच्छा
1: बहुत
0: कर
1: बारीकियां हैं आपके गायकी में, मतलब लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल सिंगर हैं आप।
0: जी सर,
1: बहुत
0: ऐसी बस तो
1: बढ़िया,
0: क्या तौर कर सर।
1: बहुत शुक्रिया आपको कि आपने इतना अच्छा गीत हमें सुनाया और अब ये गीत श्रोताओं तक पहुंच रहा है। फिल्म में हरे रामा हरे कृष्णा, नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हम बोले प्रेम नारायण कुशवाहा।
0: प्रेम नारायण कुशवाहा कौन सी जगह से?
1: मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले से।
0: निवाड़ी से हैं? निवाड़ी तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान।

0: ने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चर्चा हमने भी सुनी है इसकी।
1: यहाँ पर बड़ा किला है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का है, पास में
0: जी जी जी ऐतिहासिक जगह है। और उस ऐतिहासिक जी उस ऐतिहासिक जगह से आप वाराणसी से हमारे कार्यक्रम से जुड़े, किस तरह से आपका परिचय हुआ हमारे केंद्र और इसके कार्यक्रमों से?
1: फरमाइश प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम अपलोड होते हैं, हम वही देखते हैं।
0: बहुत बढ़िया, यानी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप प्रोग्राम सुनते हैं। तो कार्यक्रमों में भाग लीजिए, यूं ही सुनते रहिए। और आपका कामकाज किस चीज का है वहाँ पर?
1: खेतीबाड़ी कहते हैं।
0: जी जी, और अभी बारिश कैसी है और किस चीज की खेतीबाड़ी हो रही है आपके यहाँ इन दिनों?
1: ज्यादा मूंगफली की खेती होती है इस समय तो।
0: जी जी, और वही मूंगफली फिर हमारे इस इलाके में आती है।
1: हाँ, तो यहाँ पर आती है मूंगफली की खेती।
0: जी जी, पहले तो जैसे बहुत सारे जो अनाज है ना, इनका इस्तेमाल खाने पीने में होता था, अब तो इन चीजों के तेल और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनने लगे हैं जो व्यावसायिक इस्तेमाल होने लगा है। वो चाहे सोयाबीन हो और सूरजमुखी हो, मूंगफली हो, इनके तरह तरह के प्रयोग हो गए हैं आजकल।
1: मूंगफली का तेल यहाँ भी कराते हैं, बढ़िया उसकी पूड़ी बना के खाते हैं, बढ़िया टॉप पूड़ी लगती है।
0: क्या कहने, टॉप की पूड़ी लगती है। अब तो तीज त्योहारों का मौसम है, इसमें तो टॉप की पूड़ी बनती होगी आपके यहाँ?
1: बनती रहती है पूड़ी, पूड़ी बनाई पाई।
0: क्या कहने, अब बताएं कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: हमें आंखें भरी भरी मुस्कुराने की बात करते, ये गाना सुनना है।
0: आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो,
1: तुमसे अच्छा कौन है।
0: हाँ, तो अब ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर, और बहुत शुक्रिया, और आपसे फिर बातें होंगी। गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: अविनाश जी।
0: अविनाश जी थोड़ी सी आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी।
1: जी अभी अभी देखिए सर।
0: हाँ
1: आप सही है।
0: जी बताएं अविनाश जी, पूरा नाम क्या है आपका?
1: त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: किस जिले में है आपका ये?
1: जी ये तो हमारे नॉर्थ त्रिपुरा जिला है।
0: अच्छा बहुत दूर से आप बोल रहे हैं। हमारे आसाम और त्रिपुरा के भी श्रोता हैं आप जैसे जो प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है आपके यहाँ? और आपका इलाका पहाड़ी है, चाय वगैरह की खेती वहाँ भी होती है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर चाय और रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है त्रिपुरा।
0: जी
1: और त्रिपुरा और जो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल्स भी यहाँ पर मौजूद है और अंग्रेजी की जब हुआ करता था तो इसमें त्रिपुरा एक ऐसा अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था और यहाँ पर त्रिपुरा का राजा है महाराजा त्रिपुरा में रहते थे और राजप्रसाद भी बना हुआ है और एक पहाड़ी क्षेत्र है जो 1900 देवियों का पत्थर से खुदाई गई मूर्तियां हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर लोग आते हैं घूमने।
0: ये तो ऐतिहासिक जगह है और घूमने फिरने लोग आते हैं आप जैसा बता भी रहे हैं। और आपका कामकाज वहाँ किस चीज का है?
1: जी मेरा जोड़ने का काम, मतलब कि वेल्डिंग का काम है और मुझे ये काम करके बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे हमारे फौजी भाई हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं तो मुझे लोगों के घरों की सुरक्षा करने का दायित्व मिलता है। बहुत
0: बहुत बढ़िया। और चूंकि थोड़ी सी आवाज आपके, अच्छा हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, किस तरह से जुड़े आप इन कार्यक्रमों से?
1: जी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं हमारा। हम सब जो उन सभी के बारे में हमारे अरुण अच्छे कार्यक्रम करते हैं, जुड़िए तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: बहुत बढ़िया
1: जी।
0: तो हमें भी खुशी हुई आज आपसे बात करके, अच्छा लगा। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: आज जैसे कि मेरा इसमें दूसरी बार कॉल लगा है तो मैं चाहता हूँ कि आज मुझे सुना देगा मूवी के नाम है चोर वीर गाने का बोले हे हे हे हे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला आवाज हमारी शिवादी में रहेगी बातें कल भी कहेंगी गूंजेगा गीत हमारा हमको न भुलाना कभी हमको न भुलाना।
0: अच्छा गाते हैं आप भी। और कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं और हमें लग रहा है कि आपके इलाके में गीत संगीत का पूरा पर्यावरण परिवेश ही है।
1: जी मुझे गाने का मतलब सिंगिंग का बहुत शौक है, जब भी मौका मिलता तो दो चार लाइनें गुनगुनाते हैं।
0: हाँ क्योंकि हमारे कार्यक्रम में इस हफ्ते 2-3 श्रोताओं ने उधर के फोन किया और सबने अच्छा गाया तो अब गीत आप तक पहुँच रहा है। SH बिहारी

0: बोल लक्ष्मीकांत प्यारेडाल की तर्ज क्या कहना चाहते हैं आप?
1: जी मैं बोलना चाहता हूँ मुझे देशभक्ति गीत से बहुत लगाव है, कि मुझे जब भी मौका मिलता तो देशभक्ति गीत से, जैसे 15 अगस्त बीत गया है तो वहाँ पर भी मुझे मौका मिला था तो दो गाने सुन रहे थे, बहुत अच्छे लगे मुझे।
0: बहुत बढ़िया, अब गीत आप तक पहुँच रहा है, शूरवीर है फिल्म का नाम। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी सर जी, जय हिंद।
0: जय हिंद।
1: अक्षय लाल प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जय हिंद। आपका अंदाज बता देता है कि अक्षय लाल जी प्रयागराज से हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तो अभी प्रयागराज में कैसी स्थिति है, जैसे कि नदी में बाढ़ जैसी स्थिति तो इस साल नहीं हुई, क्योंकि बारिश उतनी नहीं हुई है अब तक जितनी होनी चाहिए।
1: यहाँ पे 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है।
0: अच्छा, हमारे यहाँ तो 1-2 रोज पहले बारिश हुई, कल शाम को जैसे
1: जी।
0: बहुत तेज और ज्यादा हुई, वरना बहुत जुलाई में और अगस्त के शुरुआत में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश होनी चाहिए, हर साल होती है। जी जी, अब ये होता है कि जो ऊपर पहाड़ों पे या फिर और इलाकों में जो बारिश होती है वो भी आती है, नदियों में जब जल आता है बारिश का तो वो बढ़ जाता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। और कैसे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
1: जी सर, ये रोजाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल, अब तो आपके गाजीपुर जनपद में ये जो नंदगंज है, सैदपुर है और इधर बहुत सारे देवकली वगैरह के श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उधर दूर दराज नौली वगैरह के भी श्रोता जुड़ जाते हैं।
1: जी सर,
0: नगदिलपुर एक जगह है, वहां से भी एक श्रोता हमें व्हाट्सएप वगैरह करते हैं।
1: जी,
0: तो एक और जैसे शहरों में थोड़ी सी स्थिति भले अलग है, लेकिन गांव-गांव तक रेडियो की पहुंच तो अब भी है और श्रोता कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं।
1: जी सर।
0: कौन सा गीत आज सुनेंगे आप?
1: सर जी, आज सुनवा दीजिए, पुरानी मूवी आई थी उसमें गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: शोर ही फिल्म का नाम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें, राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने गीत के बोल लिखे हैं। 15 अगस्त में कैसा आयोजन हुआ आपके यहाँ?
1: सर जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ हमारे पुलिस लाइन में।
0: तो बड़ा जोश और जज्बे का दिन होता है। वैसे आप लोग जी,
1: यही हम लोग का बढ़िया त्यौहार 26 जनवरी और 15 अगस्त अच्छा लगता है।
0: जी जी, हम सबको अच्छा लगता है, देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण हर व्यक्ति जो है देश के लिए कुछ करना चाहता है और इसके जो विकास है, तरक्की है, उस पर गर्व करते हैं हम और शहीदों के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। अब गीत आप तक पहुंच रहा है, फिल्म है शोर।
1: जी, अपनी दीदी का नाम लेना चाहते हैं, बोलते कि आप तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं।
0: हाँ हाँ जी जी, आप बताएं, आप नाम बता दीजिए।
1: हमारी दीदी का नाम कुमारी चंदा है।
0: तो आपके साथ रहती है, फिर आना जाना है वहाँ पर आपको? जी, तो अब गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। हालांकि गाजीपुर, नंदगंज और प्रयागराज से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, आप छुट्टी में या साप्ताहिक अवकाश वगैरह में आते जाते रहते होंगे।
1: जी सर, यहाँ आते जाते रहते।
0: गीत सुनते हैं, फिल्म है शोर। नमस्कार, शुक्रिया अच्छे लाल जी।
1: ओके सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी जी बताएं। अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं।
1: भदोही से राधे श्याम चौहान।
0: राधे श्याम चौहान जी, क्या करते हैं राधे श्याम जी भदोही में आप?
1: खेती बाड़ी वाला।
0: बहुत बढ़िया। हालांकि भदोही का नाम कालीनों के लिए है। और खेती बाड़ी में इन दिनों क्या हो रहा, बारिश कैसी हुई आपके यहाँ?
1: बारिश हो रहा है, नहरा है सामने बगल में।
0: जी जी,
1: पानी की कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ, इसलिए खेती बाड़ी जो है सुचारू रूप से चलते रहती है। पानी थोड़ा कम बेसी हो तभी भी नहर से आपका काम हो जाता है। और रेडियो से जुड़ाव कितना पुराना है, किस तरह से आप प्रोग्राम सुनते हैं?
1: तो ढेर दिन हो गया, कम से कम 15-20 साल हो गया। 20 साल।
0: हाँ हाँ हाँ, यानी बहुत पहले से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं।
1: हाँ, अच्छा लगता है ऐसा प्रोग्राम।
0: जी देखिए, रेडियो ऐसी चीज है ना कि उसको आप सुनते हुए खेती बाड़ी का काम हो, घर का काम हो, कुछ भी आप काम करते रह सकते हैं और फिर रेडियो भी सुनते रह सकते हैं, ये बाधा नहीं उत्पन्न करता है। जी, और कौन सा गीत आज सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: भोजपुरी में सुनना है, शारदा सिन्हा का।
0: फिल्मी गाने सुनाते हैं, शारदा सिन्हा ने फिल्मों में भी गाया है लेकिन जैसे भोजपुरी कैसेट वाला नहीं सुनवा पाते हैं इसमें ना।
1: हाँ, तो उन्हीं का आवाज में सुनवा दीजिएगा फिल्मी गाना।
0: कहे तो से सजना तो से सजनिया, ऐसे करके गीत है। और अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, शारदा सिन्हा की आवाज में है और गीत आप तक पहुंच रहा है। असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: किसे अपना कहा जाए, किसे अपना कहा जाए, सभी दिल तोड़ जाते हैं,
0: वाह
1: कर दिल की महफिल का अकेला
0: बहुत बढ़िया शेर आपने सुनाया। हालांकि हम लोग तो सबको साथ रखना चाहते हैं और रहना भी चाहते हैं, कई बार तकनीकी कारणों से थोड़ी सी श्रोताओं से संपर्क नहीं हो पाता कई बार।
1: सर मैं अभी आपके इस फोन इन प्रोग्राम में
0: जी
1: कम से कम मान लो 10:15 या 20 मिनट से ट्राई करना शुरू कर दिया था मैंने कि फर्स्ट कॉल लगे आज। कॉल जाती थी और मतलब घंटी भी जाती थी, फिर सर्वर डाउन इस तरह से लिख के आ जा रहा था बार बार और कॉल कट जाती थी अपना।
0: हालांकि आज निरंतर जो है 52 नंबर ठीक ठाक है और उस पर ही रिकॉर्डिंग हो रही है।
1: जी।
0: हाँ अब अपना तारुफ पेश कर दीजिए।
1: बिल्कुल तहसील विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। आज आपसे दिली इच्छा थी बात करने की, वो इच्छा पूरी होगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी हमें भी अच्छा लग रहा है कि दिल से हमें श्रोता इतना चाहते हैं और इतना प्रयास करते हैं।

0: देखिए करीबन एक घंटे आपने परिश्रम किया और आज आखिरश आपका फोन लग गया।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है और साथ ही बरसात बहुत अच्छी हो रही है। हम तो इस समय हरिद्वार में ही हम जॉब करते हैं, हीरो की कंपनी में, तो वहीं से कॉल कर रहे हैं इस समय।
0: बहुत बढ़िया। आपने एक बार और बताया था हरिद्वार तो बिल्कुल प्राकृतिक परिवेश के बीच में आप रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और वहाँ तो हमें लग रहा आमतौर पे भी बहुत कम गर्मी पड़ती होगी।
1: बिल्कुल सर, यहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं रहती और मौसम एकदम ठंडा भी रहता, अच्छा लगता है यहाँ पर। कुल मिला के हरिद्वार में मैं जब फर्स्ट टाइम 2017 में आया था तब से मैं हरिद्वार में ही हूँ और अच्छा भी लगा और जगहों से घूम कर देख लिए चारों तरफ। फिलहाल हरिद्वार में सबसे बेहतर लगा।
0: तभी तो उसे देवभूमि कहते हैं।
1: जी,
0: तो आप वहाँ पर हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आज कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: जी सर बिल्कुल, जब आपसे बातचीत का सिलसिला चल रहा और इस खूबसूरत से मौके पर मैं गीत तो जरूर सुनना चाहूंगा और सभी अपने जितने सुनने वाले साथियों को गाना डेडिकेट भी करना चाहूंगा। और गीत के बोल कुछ इस तरह रहेंगे, ये तेरा सजन सवरना बिन साजन के बेकार है, दो दिन का है ये जीवन तो तेरा आशिक, ये आशिक तैयार है।
0: वाह,
1: 1994 अलका याग्निक और शायद कुमार सानू की आवाज आएगी।
0: हाँ, और फिल्म का नाम आपने क्या बताया?
1: चीता फिल्म है, ये मिशन चक्रवर्ती के ऊपर फिल्म आई।
0: हाँ, चीता फिल्म का गीत है। तो अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गाते आप भी अच्छे हैं और ये पुराने गाने ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं।
1: जी सर, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी इच्छा थी, आज मेरी दिली इच्छा पूरी होगी। मुझे ये सुकून मिला कि आज आप स्टूडियो में आए। देखो कहते हैं ना, किसी बात किसी भी तरह जाती है। देखो आज मेरी जो अंदर की भावनाएं थी वो आपसे फेर हो गई और आपसे मेरी बात भी हो गई।
0: बहुत अच्छा, खुशी हमें भी होती है आप जैसे श्रोताओं से बात करके। और अब गीत आप तक पहुंच रहा है, फिल्म है चीता। नमस्कार।

श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप बुधवार को फोन कर सकते हैं सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 2221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 05542 अर्थात 0542। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, इसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।

0: के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस

0: एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सहायक पुलिस आयुक्त कैंट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार हैदर रजा, पिता का नाम मोहम्मद रजा, ये पूरा मनोहर दास अकबरपुर प्रयागराज के निवासी हैं और दिनांक 26 मई 2026 से मानसिक चिकित्सालय वाराणसी से लापता हैं। हैदर रजा की आयु है 37 वर्ष, कद 167 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा गोल है, आंखें काली हैं और बाल अधपके हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग की लोवर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो सहायक पुलिस आयुक्त कैंट कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी को सूचना दें। थाना जिगना जनपद मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके मुताबिक

0: शिवानी, पिता का नाम शेषमणि, ये असबा जिगना मिर्जापुर की निवासी हैं और 7 जुलाई 2026 को दिन में 11 बजे से अपने घर से लापता हैं। शिवानी की आयु है 19 वर्ष, कद 5 फीट के करीब, रंग सांवला, चेहरा गोल है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था जीन्स पैंट और नीले रंग की टी शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचित करें। संतोष मौर्य, पिता का नाम लल्लू मौर्य, ये दशमी खुजवा वाराणसी के निवासी हैं और 21 अप्रैल 2026 की रात से अपने घर से लापता हैं। संतोष मौर्य की आयु है 45 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग का शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं, और अब आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात में 9:30 पर कार्यक्रम होगा अंजुमन। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात में 8 बजे गुलाम अली की गाई गजलें आप सुन सकते हैं। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर बातचीत का विषय होगा पशुओं के लिए संतुलित आहार। डॉक्टर योगेश कुमार यादव से बातचीत की है दिनेश कुमार सिंह ने। साथ ही चर्चा और लोक संगीत के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगी नीतू चंचल और उनकी साथी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, हमारे प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद पर जानकारी। यूथ डायरी में आज का शब्द विश्व घटना चक्र, रोजगार, सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे, इसमें डॉक्टर मोहन कुमार की वार्ता होगी आओ करें अंतरिक्ष की सैर। 2:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म होगी जीत, प्रस्तुति सना सलीम की। आज इतवार कार्यक्रम में 1:15 पर आप सुनेंगे झलकी भांडा फूट गया, लेखक राजेंद्र कुमार, प्रस्तुति तेजिंदर वार्ष्णेय की। लोकरंग कार्यक्रम होगा 1:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी खलाई दिन के मौके पर हमवतनों और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नए आलमी तरतीब में अपने खलाई शोबे को मुसलसल बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान का खलाई शोबा आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ है। हिंदुस्तान ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अहद किया है और खलाई शोबा इस मकसद को हासिल करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद एक तकरीब में बावर्चियों के एजाजिए में इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने बावर्चियों में हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए और कैशलेस इलाज का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत ने काउंसिल स्कूलों के बावर्चियों के एजाजिए में 1,000 रुपये का इजाफा किया है। अब उन्हें मौजूदा 2,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये माहाना एजाजिया मिलेगा। बावर्चियों को कैशलेस तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाएगी। आज इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा,
2: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है।

0: है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोईया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं।
1: गुज़िश्ता रोज़ काबीना ने बावर्चियों के एजाजिए में इजाफे के सर्कुलेशन के जरिए तजवीज़ को मंजूरी दी। रियासती हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 3,53,000 से ज्यादा बावर्चियों को फायदा पहुंचेगा। तकरीब की बराह रास्त नशरियात के साथ साथ तमाम जिले और तहसीली सतहों पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। पिछले सालों की तरह वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि रक्षाबंधन पर खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम किया जाए। खवातीन एक अटेंडेंट के साथ 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कल देर शाम मुनक़िद एक आला सतही जायजा मीटिंग में वजीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट, पुलिस और इंतजामिया को हिदायत दी कि वह रक्षाबंधन पर खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के तमाम इंतजाम को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने कहा कि खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स को मुतहरिक किया जाए, बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक का इंतजाम बेहतर बनाया जाए, नशेबी इलाकों की निशानदेही की जाए और जरूरत के मुताबिक इजाफी पंपिंग स्टेशन कायम किए जाएं। नालियां जहां कचरा या पानी की निकासी में दीगर रुकावटें हैं उन्हें फौरी तौर पर साफ किया जाना चाहिए। नालों पर किसी भी किस्म की तजावजात की निशानदेही करके उसे फौरी तौर पर हटाया जाए। वजीर आला ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पूरी तरह चौकन्ना रहना चाहिए, जिले कंट्रोल रूम मुसलसल मुतहरिक रहें। जहां दरिया का बहाव आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है या रुख बदल रहा है वहां फौरी तौर पर ड्रेजिंग की जानी चाहिए। जिन लोगों के मकानात सैलाब में तबाह हुए उन्हें वजीर आला हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन लीज और रिहाइश फराहम की जाए। गलत और गुमराह कुन मालूमात फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है जो कि तकरीबन 6 माह की जरूरत के मुताबिक है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वह अपने अपने अजला में चीनी की दस्तयाबी और कीमत पर मुसलसल नजर रखें। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। वहीं उपभोक्ता भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के लिए रियासत के 12 अज़ला में 229 मराकज कायम किए गए थे। तमाम इम्तिहानी मराकज की AI से चलने वाले CCTV कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की गई। कम्बाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन इम्तिहान 2026 के लिए लखनऊ जिले में ज्यादा से ज्यादा 45 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। आगरा में 26 मराकज थे जबकि कानपुर शहर में 24 मराकज थे। कमीशन के मुताबिक तमाम इम्तिहानी मराकज पर जैमर्स का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश मातहत खिदमत सिलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इम्तिहान के पेश नज़र शुमाली रेलवे खसूसी ट्रेनें भी चला रहा है। और रियासत के कई अज़ला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। आज कुछ इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह भी जारी किया गया है। दरियसना बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों में तेजी आ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:16 और 5 सेकंड हुए हैं। आज इतवार है। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी भांडा फूट गया। लेखक हैं राजेंद्र कुमार। प्रस्तुति तेजिंदर वार्ष्णेय की।

0: अरे यार सुरेंद्र बाबू।
1: कौन वर्मा, आ जाओ अंदर आ जाओ।
0: अरे सुरेंद्र बाबू, यार आज भारत और पाकिस्तान का वनडे मुकाबला है, अरे देखने नहीं चलोगे?
2: यार इच्छा तो बहुत है, लेकिन कल तक तो सारे टिकट बिक चुके थे, कैसे देख पाऊंगा?
0: अरे यार तुम इसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे पास प्रेस गैलरी का दो आदमियों का फ्री पास है।
2: फ्री पास? सचमुच यार तो मजा आ गया। यार तूने तो वर्षों की मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। जादुई चिराग का जिन भी अलादीन की मुराद क्या पूरी कर पाया होगा इसके आगे। सच यार मैंने फ्री पास में आज तक कभी कुछ भी नहीं देखा।
0: हाँ, तब ठीक है, तुम ऐसा करो कि 10 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा।
2: लेकिन यार वर्मा एक प्रॉब्लम है।
0: वो क्या?
2: आज तो मेरा ऑफिस भी खुला है, फिर कैसे आ पाऊंगा? सालाना बजट बनाना है, बैलेंस शीट वगैरह भी तैयार करनी है।
0: अरे तो क्या हुआ यार, ये सब तो राजकाज है, चलता ही रहता है, तू क्यों परेशान होता है?
2: नहीं यार यूं ही घर बैठ जाऊंगा तो बड़े बाबू बहुत खफा होंगे। ऑफिस में बाबुओं को बात बात पर डांटना इन बड़े बाबुओं का जन्मसिद्ध अधिकार होता है।
0: अरे यार होने दो खफा, होने दो। अरे तुमने क्या पूरे दफ्तर का ठेका ले रखा है? क्या तेरे बगैर दफ्तर का काम रुक जाएगा?
2: नहीं वो बात नहीं है यार, लेकिन फिर भी
0: देख भैया देख, मैं ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्या समझा? अरे चलना है तो चल, वरना मैं तो जाऊंगा ही, तेरी बात फिर तू जाने।
2: अरे नहीं भैया मैं क्यों नहीं चलूंगा, मैं तो सिर के बल चलूंगा, फिर भला ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा।
0: सुनो मैं एक सुपर हिट आइडिया दूं तुझे। तुम आज अपने ऑफिस को सिक रिपोर्ट क्यों नहीं भेज देते?
2: हाँ यार यही ठीक रहेगा, मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठ जाता हूँ। आखिर कैजुअल लीव किस दिन काम आएगी? मैं तो वैसे भी बहुत कम छुट्टियां लेता हूँ।
0: लेकिन तुझे तो बड़े बाबू का खौफ खाया जा रहा है।
2: गोली मारो यार, बड़े बाबू कहीं के तोप है क्या? अरे बड़े बाबू हैं तो हुआ करें, हम भी हरी धनिया और पुदीना की गड्डी नहीं है जो चटनी बनाकर खा जाएंगे।
0: शाबाश शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं 10 बजे तुझे बुलाने आ जाऊंगा। ठीक है
2: ठीक है ठीक,
0: मैं चलता हूँ फिर।
2: अब मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा।
0: हाँ मैं आ जाऊंगा।
2: अरे सुना, सुनती हो?
3: क्या है ये, वो क्या लगा रखी है? गले का साउंड कंट्रोल खराब है क्या? नाम लेकर नहीं बुला सकते?
2: देखो सुमित्रा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज दफ्तर नहीं जा रहा हूँ। तुम बाहर वाले कमरे में बैठ जाना, और कोई भी घर में मुझसे मिलने आए या मुझे पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं किसी से नहीं मिल सकता।
3: भगवान न करे आपकी सेहत को कुछ हो, आप तो भले चंगे हैं, फिर भले ऐसी क्या बात हो गई कि आप मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं?
2: तुम कौन सी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बेटी हो, दिन भर तो बात बात पर झूठ बोलती रहती हो। एक दिन मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोल दोगे तो आसमान नहीं फट पड़ेगा।
3: हद हो गई, आप तो बेकार में खफा हो गए। मैंने तो केवल इतना ही पूछा था कि आखिर बात क्या है।
2: देखो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो।
3: लेकिन आप दफ्तर क्यों नहीं जाना चाहते?
2: बात यह है सुमित्रा कि आज वर्मा के साथ वनडे क्रिकेट मैच देखना है। बहुत दिनों बाद एक मौका मिला है, वर्मा आता ही होगा, उसने फ्री पास का प्रबंध कर रखा है। मैं ठीक 10 बजे मैं घर के पिछले दरवाजे से निकलूंगा, आगे का दरवाजा तुम संभाल लेना।
3: ठीक है, कोई भी दरवाजे पर आएगा तो मैं कह दूंगी कि आप बहुत बीमार हैं, चारपाई से उठ नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते।
2: बिल्कुल ठीक, इसी तरह से कहना, चाहो तो तोते की तरह रट लो इसे। अब मैं अंदर जाकर कमरे की चारपाई पर लेटता हूँ।
3: ठीक है।
4: बाबूजी घर पर हैं क्या?
3: हाँ हैं तो, लेकिन बहुत बीमार हैं, उठ नहीं सकते।
4: लेकिन बहूजी आज सुबह ही तो सब्जी मंडी में मिले थे, एक सब्जी वाली से कद्दू का मोल भाव करने में उनका झगड़ा भी हो गया था, तब तो ठीक थे, अचानक कैसे बीमार हो गए?
3: अजीब आदमी हो तुम, बीमारी क्या कहकर आती है या उसे कोई न्योता देने जाना पड़ता है? अच्छा भला आदमी क्या अचानक बीमार नहीं हो सकता है?
4: मेरा मतलब ये नहीं था बहूजी, मैं तो उन्हीं के बुलाने पर ही यहाँ आया था, आज उन्होंने बिल का पेमेंट करने को कहा था।
3: बिल का पेमेंट? कैसा बिल, मैं कुछ समझी नहीं।
4: मैं लाला रोशन लाल की दुकान का नौकर हूँ, जहाँ से आपके घर का महीने भर का राशन आता है, मुझे लाला जी ने पैसे के लिए भेजा था।
3: फिर कभी आना, अभी तो वो बीमार पड़े हैं, खाट से उठ भी नहीं सकते।
4: बात ये है बहू जी कि मैं पहले भी 2-3 बार लौट चुका हूँ, आज बाबू जी ने स्वयं पेमेंट के लिए बुलाया था, इसीलिए आया हूँ।
3: अजीब जबरदस्ती है, जब कहा था तो कहा था, अब बीमार पड़ गए हैं,